कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर बिखर जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाले दे संजरिया रहाओ। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर खरया। कई जन्म सा करो पाया, लख चौरासी जोन परमाया। साध संग भयो जन्म प्राप्त, कर सेवा भज हर हर गुरमत। त्याग मान झूठ अवमान, जीवत मरै दरगह प्रवान। जो किश होवा सो तुते होग, अवरना दूजा करना जोग। ता मिलिय जा लह मिलाए, कौ नानक हर हर गुण गाए। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, कर्म पूमे बो नाम। पूर्ण होए तुम्हारा काम, फल पावे मिटै जमत्रास। नित गावे हर हर गुण जास, हर हर नाम अंतर उरतार। सीगर कार्ज लेहो सवार रहाओ, अपने प्रभ स्यों हो सावधान। ता तू दरगह पावे मान, उक्त सियाणप सगली त्याग। संजना की चरणी लाग, सर्ब जी है जाके हाथ। कदे न विछड़े सब के साथ, उपाव छोड़ गहो तिसकी ओट। निमख माहे होवे तेरी छोट, सदा निकट कर तिसनो जान। प्रभ की आज्ञा सत्कर्मान, गुर के वचन मिटावो आप। हर हर नाम नानक जप जाप, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। गुर का वचन सदा अबनासी, गुर के वचन कट्टी जम फासी। गुर का वचन जी कै संग, गुर के वचन रचै राम कै रंग। जो गुर दिया सो मन कै काम, संत का किया सत्कर्मान रहाओ। गुर का वचन अटल अशेद, गुर कै वचन कटे परम भेद। गुर का वचन कतो ना जाए, गुर कै वचन हर के गुण गाए। गुर का वचन जी कै साथ, गुर का वचन अनाथ को नाथ। गुर कै वचन नरक ना पवै, गुर कै वचन रसना अमृत रवै। गुर का बचन प्रगट संसार, गुर कै बचन ना आवै हार। जि जन होए आप कृपाल, नानक सतगुरु सदा दयाल। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन। गर्व मैं राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी सोभा वड्याई। तिस प्रभ को आठ पहर ते आई, रमैया रेन सा जन पावो। गुर मिल अपना खसम ते आवो रहाओ। जिन कीता मूढ़ ते बगता, जिन कीता बिसुरत ते सुरता। जिस पर साधन मैं निध पाई, सो ब्रह्म मन ते बिसरत नाही। जिन दिया निथावे कौ थान, जिन दिया निमाने कौ मान। जिन कीनी सा पूर्ण आसा, सिमरो दिन रहन सास गिरासा। जिस प्रसाद माया सिलक काटी, गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी। कहो नानक इस्ते किश नाही, राखन हारे कौ सालाही। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, तिसकी सरण नाही पौ सोग। उसते बाहर कछु ना होग, तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार। दास अपने की राखन हार, जप मन मेरे राम राम रंग। कर बाहर तेरे सदसंग रहाओ, तिसकी टेक मने मैं राख। गुर का शब्द अमृत रस चाख, आवर जतनों

हर हर नाम जपत जन तारियो, अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भए, जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहो सब जाए। गुर पूरै सब भ्रम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए, ओह बेला का चीत न आवै। बिनस जाए ताहू लपटावै रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हाँ बंदा हाँ साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर। हाँ पंडित हाँ चतर सियाणा, करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाना, क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना। सब किस तेरा तू करने हार, अंत नाही किस पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु सियाण पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उला। तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख, नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै गृह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत उपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै, तिसकै पालै कछु नाम पड़ै। जिसका राज तिसै का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

हर कै मार्ग पतत पुनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, करण हार सदवसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवां, संत की तूर मिट अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ, संत कै संग मिटिया हंकार, दृष्टिया वै सब एक अंकार, संत सो प्रसन्न आए वसपंचा, अमृत नामृत लै संचा, कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवां, हर गुण जपत कमल प्रगासै, हर सिमरत त्रा सबनासै, सा मत पूरी जित हर गुण गावै, वड्डे पाक साधु संग पावै रहाओ। साध संग पाइए निदनामा, सा संग पूर्ण सब कामा, हर की भगत।

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच्छ पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवा, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात, प्रभ कृपा ते पए सुहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सगल रोग का बिनस्या थाओ, सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै,

सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी, रहाओ सूख सहज रस महा आनंदा। जब जब जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए। साध कै संग किलबिक सब धोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए। तिस्यो आलस क्यों बने माए, खसम बिसार आन कम लागे। कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा। दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान। जिन दिए तसै न जाने सुवान,

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन

तिसनो जो है दूत धर्म राय, तिस्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म पर मैं बोजूना रहाओ। सागत की ऐसी है रीत, जो कुछ करे सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन धारिया, सोई ठाकर मनो बिसारिया। बदे बिकार लिखे बहु कागर, नान कुदर कृपा सुख सागर, पार ब्रह्म तेरी सरनाए, बंधन काट हरनाए। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पादीत, ऐसा मीत करो सबको, ए जाते बिरथा कोई ना होए। रहाओ अपने स्वायर दलै धारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया, रसना गिद्धी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम, अनक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा, गौड़ी महला पंजवा। कोट बिगन हिरे खिनमाहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस अमृत गुण जास, जप हर चरण मिटी खोतास। रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान, जा कर दैवसै भगवान, औखद मंत्र तंत सब शार, करने हर दे मैं तार, ताज सब परम पजो पार ब्रह्म, कहो नानक टाल्यो धर्म, गौड़ी महला पंजवा। कर कृपा भेटे गुर सोई, तित बल रोग ना व्यापै कोई, राम रमण तरन पै सागर, सरन सूर फारे जमकागर। रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम, एह असर पूर्ण पय काम, जप तप संजम पूरी वड्याई, गुर कृपाल हर पय सहाई, मान मोह खोए गुर भरम, पेख नानक पसरे पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा। बिखै राज ते अंदला भारी, दुख लागै राम नाम चितारी, तेरे दास को तुही वड्याई, माया मगन नरक लै जाई। रहाओ रोग ग्रस्त चितारे नाओ, बिख माते का ठौर ना ठाओ, चरण कमर स्यो लागी प्रीत, आन सुखा नहीं आवै चीत, सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी, मिल नानक हर अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, आठ पहर संगी बटवारे, कर कृपा प्रभु ले निवारे, ऐसा हरस रमो सब कोए, सर्व कला पूर्ण प्रभु सोए। रहाओ महातपत सागर संसार, प्रभु खिन मैं पारो तारण हार, अनक बंधन तोरे नहीं जाए, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उगत सियानप इस्ते कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड़ भागी हर कीर

साधु संग करो सबको ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगह पाईए मान गौड़ी महला पंजवां। जल थल महियल पूर्ण हरमीत प्रांबिन से गाए गुणनीत ऊठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रभुदय निवास सगल दुखा होया नास आसा मान तान तन एक साचे साह की मन में टेक। महागरीब जन साध्या नाथ नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवां। हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किलबख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर किरपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवां। पौ सरण आई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर राते पै पंजन प्रभ माना बसाही डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम जन्म जरा मृत जसवास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवां।

गौड़ी महला पंजवा नित प्रत नावन राम सर की जय चोल महारस हरे अमृत पी जय रहाओ निर्मल उदक गोविंद का नाम मज्जन करत पूर्ण सब काम संत संग तै गोष्ट होए कोट जन्म के किलविख खोए सिमरै साध करै आनंद मंत्र रव्या परमानंद जिसै प्राप्त हर चरण निधान नानक दास तिसै कुर्बान गौड़ी महला पंजवा सो किछ कर जित मैल ना लागै हर कीर्तन मैं एहो मन जागै रहाओ एको सिमर

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ, सीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तान्यो मस्तक।

खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जनकी कीनी आप सहाय, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपै पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्त्र पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत उर्द तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु स्यो मन माने। आगाध बोध हर अगम्या पारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक प्रभु कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरदे बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे आराध मेरा मन धीरा रहाओ। आन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेव की आपै रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवको आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए। करन करावन पूर्ण सज सोए, रहाओ आप मन बसिया करना हारा। पै बिरसे आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे। जन्म जन्म के किल बिखलाथे, कह ना जाए प्रभ की वडियाई। नानक दास दा शरणाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा। दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूर्ण भाई। ताते बिरथा ना व्यापै काई, रहाओ जो जो चितवै दास हर माई। सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रपत गवाई। नानक हर गुण निरपौ गाई, गौड़ी महला पंजवा। पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गए लेहो अंगुरिया। रहाओ श्रवणन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता मैं तरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुखदातया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्तो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सदी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला, कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अहट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न पय के सवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुतबंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिखतर या संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के, शंत के घर। महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै,
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਚ ਪਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਬਨ ਬਨ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦ ਪਿਚਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ।

ले वर्ण ना साकाऊं तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते भ्रम पौ काट किए नह केवल जबते हम मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान त्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा अवरना किन्हीं कीता तुमरै पाणे परम मोहे मोहया जगत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शनो साध संगत कै पाछ कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछै

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज अनंत ना संग उन संसार अवर नाम दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनके उनकी शरण पर ऐसो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ता कै चरण परो ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की ऋण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोबन अवध जो दिसै सब केश युग मैं काटिया नाम निदान सदनव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ। नौ खंड पृथ्वी इस तन मैं रविया निमख निमख नमस्कारा दिख्या गुर की मुंद्रा कानी दृढ़ो एक निरंकारा। पंच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैराग ने आज्ञाकारी तब निर्मल योगी थिए। परम जराय चराई विभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भूता जो ठाकर मस्तक लेखिया। जै पौ नाही तहां आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा योगी वडभागी पेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनाओ सगल त्याय ले मीता हर औखद जां को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो ते तंते गुर शब्द दीपक प्रगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जां को साध संगत विश्वासा। तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोइथ साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा। गुर पेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तां तृप्तिया गाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी अंध कू मैं हाथ दे राखो कछु सियाण उक्त न मोरी। रहाओ करन करावन सब किस तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गतमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रवराते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै जैसे दृष्ट्यो चन चकोरी। राम संत मैं भेद किश नाही एक जन कई मैं लाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभु होवा आन दिन कीर्तन रस नरमोरी। तुम समराथिया पार अतूचे सुखदाते प्रप्राणिया दोहरी नानक कहो प्रभु की जय कृपा उन संतन के संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा तुम हर सेती राते संतो निभाए ले हो मोको पुरख विदाते ओढ़ पौ चावो दाते। रहाओ तुमरा मर्म तुमाही जानिया तुम पूर्ण पुरख विदाते राखो सरना ना दीन को करो हमारी गाते। तरन सागर बोध चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सबके तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जनो चले हमारे साथे। निर्गुणी आरे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा गौड़ी महला पंजवा सहि समायो देव जां को सतगुर पए दयाल देव। रहाओ काट जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरै दिखायो। पयो प्रगास सर्प उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मंत्र बतया अन पै ठहरायो।
मान आज्ञा सर्व सुख पाए दुखै ठाओ गवायो जौ सो प्रसन्न पाए प्रभ ठाकर सब आनंद रूप दिखायो ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बू सुख पाइय रे जो प्रभ करै सोई पल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारे खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावै तसै निवाजै रे सब को मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे देंदे तोट नाही तस करते पूर रहे रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दास ताकी सरनाई जाते बिरथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबू न मनो बिसारे इहा उहा सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रहाओ महा कष्ट काटै खिन भीतर रसना।

चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बिगारे। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चल्यो है मूढ़ नंग। चोवा चंदन दे फूलिया, सो तन तर संग रूलिया। मोहे मोहे आ जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा, मन तार तर बेहर नामनो, सागर लहर संसार संसार, गुरबोइत पार ग्रामनो रहाओ। काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया बसरियत कनी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया, गुर भेट परंपो खोया। कहो नानक एक ते आया, कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तुही एक, सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया। मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साध्या। बख्शीस वजो मिले एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभु के चाकर से भले, नानक तिन मुखी उजले। गौड़ी महला पंजवा, जिया रे ओला नाम का। अवर जे करन करावनो, तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है, वड़े पाग हर त्याई है। लाख हिकमती जानी है, या गै तिल नहीं मानी है। अहू बुद्ध कर्म कमावने, ग्रह बालू नीर बहावने। प्रभ कृपाल कृपा कर, नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा, बार न बलिहार न लख बरिया। नामो हो नाम साहिब को, प्राण अदरिया रहाओ। करन करावन तुही एक, जी जंत की तुही टेक। राज

प्राण सुखदाता सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए बोजुग आस बधाए, गृह मंदिर संपै जो दिसै जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरो ठाकरो खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना चोवा चंदन लाए, निरपो निरंकार नहीं चीनिया ज्यो हस्ती ना वाए। जो होए किरपाल ता सतगुर मिले सब सुखार के नाए, मुक्त पाया बंधन गुर खोले जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता तेते ही गुण गाइए, जा होए दयाल सतगुर अपना ताए मत बुद्ध पाइए। मेरे मन नाम लय जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइए, सेव स्वामी सतगुर दाता मन वंचित फल आइए। नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सदगुर अपने की गुरते पाइये पाले। गुर किरपाल किरपा प्रभ तारी बिनसे सर्ब अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे

पर ग्रह बेकारी बुरा पला नहीं सुझी है। अनक बंधन माया परमत परमाया गुंडित नहीं गाया मन बिखै ही मैं लुजी है। जा कौरे कृपा करै जीवत सोई मरै साध संग माया तरै नानक सो जन्म दर हर सिजी है। गौड़ी महला पंजवां सब।

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो, सहज केलो अनद खेलो, रहे फेर पय मेल, नानक गुरशब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ, सेवत सेवत सदा सेव, तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साध की हो कटिए जमजाल, होम जग तीर्थ किए बिचह मैं बदे बिकार, नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार, शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निहचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे, जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कहे सुन।

राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ तौ लो दुखन भरे जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया तौ आनंद सहजे जेती सियानप कर्म हों किए ते बंद परे जौ साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त पए जौ लो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो तब हम सहज सोए।

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवां मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान रहाओ। जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ ना आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध। ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम अगाध। पय कृपाल गुसाई।

गुर सच्चा सृजनहार, गुर तुठै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माझ महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहाओ। राम गोबिंद जपिंदिया, होवा मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनो विसारिय जिस मृत दुख जाहे। जिस लड़ लगे जीविय भव जल पइए पार, मिल साधु संग उधार होए मुखी उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस, संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू, तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरतिया मिलिया निथावें थाओ रहाओ। होर साध सब फिकिया, तन मन फिका होए, विण परमेसर जो करे फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साध का तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आराधिय उदरै सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए कै पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर, हर के चरण निदान, नानक जाचक दर

हो। सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्याग खोजे पद निर्वाणा, जन नानक हो खेल कठिन है किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक बिनस एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई। रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को, हर जस मन नहीं आवै। अहनिस मगन रह माया मैं, कहो कैसे गुण गावै। रहाओ पूत मीत माया ममता, स्यों एह विद्या बंधावै। मृग तृष्णा ज्यो झूठो, एहो जग देखता से उठतावै। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूढ़ ताहे बिसरावै। जन नानक कोटन मैं को, भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा साधो, एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिरलीना, तासों कछना बसाई। जोगी जतनो करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फोन, भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो निमखना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की वृथा जन्म सिरावे माया मोह महा संकट बानो तासो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावे नानक मुक्ता है तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिश्रामा वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परस जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए जे नहन तेह तुम जानो ज्ञानी नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा अहन से औद कट नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ

मानस देहे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाए करना मैं, पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला, गौड़ी गुआरेरी एक ओवंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, निद सद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल बजार, गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया, रहाओ एक सुख मानिया, सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पय सूहा रंग माया, नदर पई बिगठाक रहाया, उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवै मन हर स्यों लागया, रस संग्रह बिख पर हर त्यागया गया।

दृष्ट भई सुख आत्म धारा, तुझ बिन कोय ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सह समाना। गौड़ी गुआरे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्नि इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदय मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामे सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, हौ मैं करत्या नै सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावे दोए, सो कमावे तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

तृष्णा यगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहे सुभाए, गुरमति नामृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो गुरम

ऐसो दास मिले सो होई, दुख विसराए पावे सच सोई। दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरण धूरी रहाओ। नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा। सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख पेवा। जै जै देखो तैं तैं साचा, बिन बूझे झगड़त जग काचा। गुरसम जावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई। कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले। गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा। संत हेत प्रवतर पवन धारे, आत्म चीने सो तत् बिचारे। साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास। गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया। वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार। रहाओ बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पार अफारी। बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवै। बिन गुरे अंत न पाए अपेवै, आप भुलाए आपे मत देवै। दुर्मत हर नाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी। प्रहलाद उधारे कृपा धारी,

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोएथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे, तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, तिसको वाह वाह जे मेल मिलावे। वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए परम।

चेरी की सेवा करे ठाकर नहीं दिसे, पोखर नीर विरुलिय मखन नहीं रिसे। इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीन आप कहो सो अपरिया पारा। सब आपे आप वरदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। आरा गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां, एको अंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबे ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कै नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोहवाकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अगन पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किश खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नामे को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उत्तर सपार। साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रह सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जियो राखो हृदय उर तारा, गुरमुख शोभा साज दुबारा। पंडित हर पड़त जो

सदा आनंद हर नाम लिवलाई, गुर मिले हम कौ शरीर शुद्ध भई, हो मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गए लई, हर आपे कृपा करे नाम देवै, गुरमुख रतन।

मन कर हला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिवलाए, घर जाए पावै रंग महली, गुर मेले हर मेलाए। मन कर हला तू मीत मेरा, पाखंड लोभत जाए, पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए। मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए। मन कर हला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन कर हला मेरे सजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आप लया गल लाए। मन कर हला गुर मन्या, गुरमुख कार कुमाए, गुर आगे

मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ, मन करहला विचारिया मनुख फाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चलै तेरे नाल। मन करहला वडभागिया हर एक नजर निहाल, आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल। मन

मन कर हलावट पागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियाड़ा जम काल अंतर निदान मन कर हले भ्रम पवै बाहर पाल गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन कर हले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरै गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन कर हले हर तरवर पुरख अकाल वड पागी गुरमुख पाया जन नानक नाम सुमाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहो मन मैं करत गुमाना तब यो बावर फिरत बेगाना जब एहो हुआ सगल कीरी ना ता तेर मैया कड़कड़ जीना सहज सोहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किस को एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाई ता ते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इस को है मुश्किल भारी जब इन करने हर पिछाता तब इसनो नाही किस्ताता जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किश कर्मा ने पेदा तब ते दुख डंड अरखेदा जब इन एको एकी बुझिया तब ते इसनो सबके सूझिया जब एहो तावै माया अर्थी न तृप्तावै न तसलाथी जब इसते एहो यो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी करन करावन सब किश एक आपे बुद्ध विचार बबेक दूर ना नेरे सब कै संगा ससालाहण नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुरसेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा तिसके हृदय रव्या सोए मन तन सीतन निचल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरा रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए तावत मनुआ आवै ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत हम पागे जास जपत वसिया वै पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझै जास जपत हर दरगह सजै जास जपत कोट मिटै अपराध जास जपत हर होवै साध जास जपत मन शीतल होवै जास जपत मल सगली खोवै जास जपत रतन हर मिलै भवन न छोड़ै हर संग हिलै जास जपत कई बैकुंठ वास जास जप सो सहज निवास जास जपते अग्न न पोहत जास जपते काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जप सगला दुखलाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जप सुन अनहत तुने जास जपते निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा कहो नानक जे सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर धारै पंच जना स्यो संग निवारै दस इंद्री कर रखै वास ताके आत्मै होए परगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है

ही जपना। सहजे भोजन सहजे भाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ। सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग। सहजे गृह में सहजो दासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जा कै सहज मन भया आनंद, तां को भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसिया, तां कै संग अबनासी बसिया। सहजे आसन आसर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहजे रोण चुनकार सुहाया, तां कै कार पार ब्रह्म समाया। सहजे जा को पर्यो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा। जा कै सहज पया सो जाने, नानक दास तां कै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया। पुत्र कलात्र कुटम संग जुरिया। भोजन अनक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे। कवन स्थान जो कबो न टरे, कवन शब्द जे दुर मत हरे रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना। शिवपुरी गा होएगा काला, त्रै गुण माया बिरस बिताला। गिरतर तरण

तीर्थ देव देहोरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, धोती डंडौत प्रसादन भोगा, गमन करै गो सगलो लोगा, जात वर्ण तोर कर हिंदू, पस पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दिसै पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद निश्चर सजथाना, तहां संगत साध गुण रसै, अनपौ नगर तहां सदवसै, तह पौ परमा सोग न चिंता, आवण जावण मृत न होता, तै सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत ना पार, कौन करे ता का विचार, कहो नानक जिस कृपा करै, निश्चल थान साध संगत रै, गौड़ी महला पंजवां, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तसै वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोए जो दुबदा मार गवावै, इसे मार राजो कमावै, रहाओ जो इस मारे तिसको पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै, जो इस मारे सो दरगह सजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जदी, जो इस मारे तिस होवै गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निश्चल धनी, जो इस मारे सो वडभागा, जो इस मारे सो वंदन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सोई सुगयानी, जो इस मारे सो सहित्यानी, इस मारी बिन थाए ना परै, कोट कर्म जाप तप करै, इस मारी बिन जन्म ना मिटै, इस मारी बिन जमते नहीं छुटै, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन जूठन धोई, इस मारी बिन सब किश मैला, इस मारी बिन सब किश जवला, जां कौ पए किरपाल किरपा निद, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबदा जां की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी, गौड़ी महला पंजवां, हर स्यों जुरै ता सब को मीत, हर स्यों जुरै ता निचल चीत, हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुरै ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारै नाही होर, रहाओ वड़े वड़े जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुनै, तिसकै संखिन मैं उदरै, कोट मजन जा कह सुन नाम, कोट पूजा जा कह ध्यान, कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी, मन अपने मैं फिर चेत, बिनस जाए माया के हेत, हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कह रंग, जा कह काम उतरै सब भूख, जा कह कामना जो है दूत, जा कह काम तेरा वड़ गमर, जा कह काम होवै तू अमर, जा के चाकर कौ नहीं डान, जा के चाकर कौ नहीं बान, जा कह दफ्तर पुछै ना लेखा, ताकि चाकरी करो बसेखा, जा कह उन नाही काहू बात, एक आपा ने कह पात, जा की दृढ़ होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर नाही को मूड़ा, ना को हीण नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जस भागा, गौड़ी महला पंजवां, बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी, त्यों जीवै साक्त नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मैं जिया, कोट दिन सलाख सदा थिरथिया, रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा मैं वास, बिन सिमरन पय कूकर काम, सागत बेसवा पूतन नाम, बिन सिमरन जैसे सींग शतारा, बोले कूर सागत मुखकारा,
ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰਦ ਬਕੀ ਨਿਆਈ ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਪ੍ਰਹਿਟ ਫਿਰਾਹੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਗੁਰਮੂ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹੇ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨ ਮਖਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲਹਰਾਉ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਚੂਲਾ ਵੋ ਪਾਖਾ ਮਹਾਂਯਗਨ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਖਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਢੋਵੋ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤ ਜਾਣੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत ना लावे, कोट कर्म करतो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना अरादा, चोर की न्याई जमपुर बादा। लाख अडंबर बहुत विस्थारा, नाम बिना झूठे पासारा।

सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्वस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे असंख्य अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिन्ना किरपारिया। हों वारिया हर वारिया रहाओ, सुन सुन पंथ डराओ बहुत पैहारिया। मैं तकी ओट संताहा लिहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निमनु लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसी ही ना है हर पूर पंडारिया। चाहो दिस जपिए नाओ सुख सवारिया। मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कु पारिया। मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निधान अकथ कथारिया। हर दरगह सोभावंत बहाल उडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल्या पारिया। गुर सेवा पौजल तरिय कहो पुकारिया।

एकलड़ी बनमा है, क्यों तिरेगी ना बिना प्रवे प्रवाहे, तन ना बाजो रह ना सके, बिखम रहन कनेरिया। नह नींद आवे प्रेम भावे, सुन बेनंती मेरिया, बाजो प्यारे कोई ना सारे, एकलड़ी कुर लाए, नानक सातन मिले मिलाई, बिन प्रीतम दुख पाए। पिर छोड़ी आड़ी जियो कमन मिलावे, रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे, शब्दे सुहावे ता पत पावे, दीपक देह उजारे। सुन सखी सहेली साज सुहेली, साचे के गुण सार है, सतगुर मेली ता पिर रावी, बिकसी अमृत बाणी, नानक सातन ता पिर रावे, जा तिसके मन पाणी। माया मोहनी नी करिया जियो, कूड़ मुठी कूड़ियारे, क्यों खूले गल जे वड़ा जियो, बिन गुरे अत प्यारे, हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे, तिस ही का सो होवे। पुन दान्या नेक नावन, क्यों अंतरमल तोवे, नाम बिना गत कोई न पावे, हठ निग्रह बेबाण, नानक सच कर शब्द सियापे, दुबदा महल के जाने। तेरा नाम सच्चा जियो, सब सच्चा विचारो, तेरा महल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अन दिनो, तिस बाज वखर कोई ना सूजे, नाम ले वो खिन खिनो। परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम महारस मीठा, गुरपुरे सच पाया। रा गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा, एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, सात अन बिना करे जियो, हर के गुण सारे, खिनपन रहना सके जियो, बिन हर प्यारे रहना सके, गुरबिन मैल ना पाईए, जो गुर कह सोई पर की जय, तिसना यगन बुझाई है, हर साचा सोई तिस बने अवर ना कोई, बिन सेवे सुख ना पाए, नानक सातन मिले मिलाई, जिसनो आप मिलाए। तन रहन सुहेलड़िए जियो, हर स्यो चित लाए, सतगुर सेवे पाओ करे जियो, विचों आप गवाए हर गुण गाए, अंदन लागा पाओ। सुन सखी सहेली जी की मेली, गुर कै शब्द समाओ, हर गुण सारी ता कंत प्यारी, नामे तरी प्यारो, नानक कामन ना प्यारी, राम नाम गलहारो। तन एकलड़ी जियो बिन नहा प्यारे, दूजे पाए मुठी जियो, बिन गुर शब्द करारे, बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई, कूड़ विगुती ता प्रमुती, सातन मैल ना पाई। गुरशब्दे राती सहजे माती, अंदर रहे समाए, नानक कामन सदा रंगराती, हर जियो आ मिलाए। ता मिलिया हर मेले जियो, हर बिन कवन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए, गुर परम चुकाए, इउ मिलिए माए, ता सातन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोरे अंधार, बिन गुर मग न पाए,

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावै जा पिर भावै गुरमती चित लाइयै, सदा सुहागण जा सतगुर सेवे गुर कै अंक समाई है, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे, नानक कामण नहा प्यारी जा हर के गुण सारे, सात हन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हम मैं मारे इन बद मिलो प्यारे, सातन सोहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रहिए अमृत गहिए दुबदा मारन वारे, नानक कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे,

पानी अन्न ना पावै मरिए हावै, बिन पिर क्यों सुख पाई है। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावै, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित उपजै, बिन भगती मैल न जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो। गुर कै पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो। अंतरे और तारे अंतरे और तारे मिलिए प्यारे, आन दिन दुख निवारे। अंतर महल प्रदावे कामन गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सोहागण गुर कहत अपारे,

राम नाम वा पराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे, जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे। आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए, आपे गुणदाता गुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो, हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो। घर बैठिया हर पाए, घर बैठिया हर पाए सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए। नामो बीजे नामो जमे नामो मन वसाए, नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिराजियो जा चाख है चित लाए, रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना शब्द सुहाए, नाम ते आए सदा सुख पाए नाम रहे लिवलाए। नामे उपजे नामे बिरसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमती पाईऐ आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिराजियो तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किनै सुख ना पायो पिराजियो बिख्या लोभ लुभाए, बिख्या लोभ लुभाए।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद पसहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा।

नानक एको रवरया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओवं साधु सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं। आपे सुनो आपे सुख आसनो, आपे सुनतो आप ही जासनो। आपने आप आपे उपायो, आपे बाप आप ही मायो। आपे सूखमो आपे अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला।

तंदे कहां ब्यापै ताहू जो एक शाड़ियन कतै न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम। नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए। पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कह जोग ना हो। ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत संसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै पाग मथोर। पौड़ी या जुग मैं एक कवाया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तप करते सास सास स्मृत प्रवरते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत्युत नानक तिस बिसरो नाही। सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आवन जाना तेह मिटै नानक जेह मन सोए। पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए। सलोक किरतक मामन सोभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप पास अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो पायो जो आप देवायो उवा का अंत न जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा। सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जै रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छुटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम सेओ तौ एउ कर्म बेकार। बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे न बुझे सो प्रभ सधू संग लेखे गणतना।

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना हरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुभ देऊ ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरण होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या माया।

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिया, जास रसनो हर हर जस भनिया। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सो जन ना मै राता, जां को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जबत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूरा उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरो तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिखिया दिन चार छे, छाड़ चले सब कोए। कां को मात पिता।

गंगा ग्रासै काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पै नानक ने छपया सलोक चित चित वो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिग सांत प्रगट पै आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिनसो शब्द हुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टेता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बौचितराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परमगत पाई।

दें दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सब जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं कहूं कहू मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, श्लोक धर जिया रे इक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तदा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मन प्रगास, तन साचा तेउ सच सहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जाको, निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद तूरे, श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सो, नानक दूसरे अवर ना को, श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नितनीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कलजुग मैं पाया, फिरया ओसर चरै नहाथा, नाम जपो तो कटिये फासा, फिर फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल लहो नानक बेचारे, श्लोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस ना।

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भगत जना की बरत नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कौ परै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालख जीना हर तन जन कौ आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रकट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग के ते तरे पार जाते ओ हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत हृदवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तोल कश अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सिमरत वखियान जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तोल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवे महा उदास्त पीसर थीवे अग्न माहे होमत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्यौली कर्म करे बोवासन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौपी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करे दिन से अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहू ना बिखिया उटर जल धोवै बहु दे अनीत शुद्ध कहां होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पत बहु मूच बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै अनक जतन कर तृष्णा त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोटो पाव दर गै नहीं सजै छूट सना ही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेख सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राख नहारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कू मैं पतत बिकराल नानक काढ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश करै छपाया।

मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण। मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौहिर। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौ तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल देहे नानक हर हर नाम ले। बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरार्थ दाम। तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परबीन, बाहर पेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्म मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिर प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लोभावे जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पास सेती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताक जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद या पूखन पहरी जै मन ते सिमरत क्यों वालस की जै जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरसो सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नान कोट मदे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो वै नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै।

साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम या तुम्हें सोदै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन ना आवै वेद पुराण।

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवरना मैं जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सासंग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जूत कतै ना पाइय धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्मयो दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोउ कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कही है जीवन मुगत। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग, प्रभ पावे सोई फन होग, पसरियो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत ना पारा वार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कौ हिरै, कई कोट

नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट

ज्यो प्रभ राखै तिवहि रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधु मो ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमे परमिया। नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै। ज्योत पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संग ते हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मान तन नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजा मान। सो नरक पाती होवत सवान, जो जाने मैं जो बनवंत। सो होवत बिष्टा का जंत, आप स्कौ कर्मवंत कहावै। जन्म मरे बह जोन परमावै, तन भूम का जो करे गुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै। नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै। धनवंता होए कर गर्भावै, तृण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मान की ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार। अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै। आप स्कौ जो पला कहावै, तसे पलाई निकट न आवै। सर्व की रेण जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हो छूटै। सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज। नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसे प्राप्त होए। करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू कै संग। बूझै देखै करै बबेक, आपै एक आपै अनेक। मरै ना बिरसै आवै ना जाए, नानक सदी रहा समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करणहार। उसते पिन कहो किश होए।

दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो है पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुणी यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगा।

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार हो कश ना दृटे ता पापुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक सह व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म ता मोह कहां किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी ता बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगमय अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किसे भूख कवन त्रिपतावे। करण करावन करने हार नानक करते का नहे सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन। जब अपने आप उरतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है। जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाल आशेदा भेद।

एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपने आप आपतियारा तै कौन कथा कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊते ऊचा नानक आपस को आपै पहुचा, जह आप रचियो पर पंच आकार तेहो गुण मै कीनो विस्तार, पाप उनते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान, आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अब

गाँव अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरैतन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ता के कर्म सब ते ऊच ता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ता की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविद करो विचार पतो धारण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए साध।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मंतन बसै तज काम क्रोलो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेश, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पए जिनमन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तो घण सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाँ हाँ करत विहाए, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अन के उपाए। आद ब्याद उपाद रस कबो न टूटै ताप, पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बुझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महानरक मैं वास, कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान, चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम। पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार, सर्व खेम कल्याण निद राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग। पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच, कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै न बुझिए न कछ करत विचार, स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन ब्राह्मण कीने कर्म अनेक, रचन हार न सिमरियो मन ना विचार विवेक।

को खाटशास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खाटशास्त्र कह स्मृत कथ अनेक उत्तम उच्चो पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यो बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान परम बिनसेओ पाई शरण दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिराए सात संग लिव लाए खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए सलोक संत मंडल हर जस कथ बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक शिष्यो लिवलाए पौड़ी सप्तम संचो नाम तन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय दुख हरे पव जल तरै मन चंदया फल पाए आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहारण हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाइय तजिय अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरुद्र मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिय नानक नाम हर रंग सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार पौड़ी नौमी नवे छदर अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारतरे रमै बकै साध निंद कर न सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कै ताई अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे सलोक दह दस खोजित मैं फिरयो जत देखौ तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन संतोख नाम जप लीने करनी सुनिया जस गोपाल नैनी पेखत साध दयाल रसना गुण गावै बेअंत मन मै चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाई नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है सलोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोबिंद न जानिए नानक सब बिस्माद पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इनविद वर्त संपूर्ण भया तावत मन राखै कठाए मन तन सुध जपत हर नाए सब मै पूर रहे पार ब्रह्म नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म सलोक दुर्मत हरि सेवा करी पेटे साध कृपाल नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान हर की भगत करो तजमान हर अमृत पान करो साध संग मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब को संतोख है पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है गुर पूरे ते एह निहच उपाई है नानक राम रमत फिर जो न आई है सलोक
तीन गुणा मैं व्यापिया पूर्ण होत न काम पतो धारण मन बसै नानक छूटै नाम पौड़ी त्रौत सी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन ना मन मैं आयो सुख सागर प्रभ निमख न गायो हर सो का दे कर बाध्यो दीर्घ रोग माया आसा देओ दिने बेकार करत श्रम पायो नैनी नींद सुपन बरड़ायो हर बिसरत होवत एह हाल शरण नानक प्रभ पुरख दयाल सलोक चार कुंट चौदह पवन सगल व्याप्त राम नानक ऊना देखी पूर्णता के काम पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप सगल पवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रभ एक तरण आकाश सम प्रपेख जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तै बसै दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान सलोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोबिंद संत प्रसादी भै मिटे नानक बिनसी चिंद पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संतोख दिया गुरुदेव मन तन शीतल शांत सहज लागा प्रभ की सेव टूटे

सिर जोरा अमर है नित देवै भला जोरा दाख्या पुरख कमाम दे से अपवित अमेद खला काम व्यापक शुद्ध नर से जोरा पुष चला सतगुर कै आख्या जो चलै सो सतपुरख पल भला जोरा पुरख सब आप उपाया नो हर खेल सब खेला सब तेरी बणत बनावनी नानक पल भला पौड़ी तू वेहो तू वे प्रवाहो अथाहो है अतुल क्यों तुलिया सेवड़ पागी जे तो त्याय दे जन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है सतगुर की रिस है होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है ओ नांदर होर मुख होर है बिख माया नो चख मर दे कड़ी है श्लोक महला चौथा सतगुर की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट विकार झूठ ओए आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले सच्यार सिख बै सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आखिया सुखावै नाही तिन्ना मोह भलेरे फिरै दईए गाले जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किजर किवे राईयन मन मुख बेताले सतगुर नो मिले सो अपना मन थाए रखै ओह आप वरतै अपनी वथ नाले जन नानक इक ना गुरमेल सुख देवै एक आपे वख कड्डै ठगवाले महला चौथा जिन्ना अंदर नाम निधान हारो तिनके काज दईये आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंक।

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंधे नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अणहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस न होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आख सुनाए, महला चौथा, हुंदे परतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुष्टी गुर के फिटके जे ओस मिलै तस कुष्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावें की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठ गया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरा सो पूरा होई, गुर की वड्याई न चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आ बैठ के आया पे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो झाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुनै नित सब किश तिदू किश कुजा ना होया, जैसा बीजै सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया जन नानक नाम ते आए तू जप हर हर नाम सुख होया महला चौथा वडभागिया सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेव कड़े खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया इको ओत पोत एक देखिया क मन्या इको सुनिया श्रवण सरोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत श्लोक महला चौथा सब रस दिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिन कौ सब देखन जाए जिन निरपो नाम ते आया तिन कौ पौ कोई नाहे हर उत्तम किनी सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे ओए आप तरे सब कुटुंब सियों दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक कहो हर मेल जन तिन वेख वेख हम जीवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए तन तन गुरु जिन ना मारा दया आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छाए हर सतगुर मिलो दया कर जन नानक तो वह पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अगम है जिस अंदर हरि उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरो मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया श्लोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलेओन मुख गुरमुख नाम ते आए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुर पूरा करी वसाए सी जिन अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी जिन रखण कौ हर आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम ते आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुरसिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर रख पै सतगुरु की नित चढ़ै सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हार तिन सब आण निवाई जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई हर दरगह ते मुख उजले बहु सोभा पाई जन नानक मंगै धूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वडियाई सा लाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आ गाई एहो हरा से ही जान दे ज्यो गूंगे मठियाई खाई गुरपूरा हर प्रभ सेविया मन वजीवा दाई श्लोक महला चौथा जिन्ना अंदर उम्र थल से ही जन सूलिया हर जाने से ही बिरो हाओ तिन विटो साध कुम कोलिया हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विटो तल रोलिया जो सिख गुर कार कमावै हौ गुलम तिना का गोलिया हर रंग चलू लै जोर ते तिन पिनी हर रंग चोलिया कर किरपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया महला चौथा औगणी भरिया शरीर है
क्यों संतों निर्मल होए। गुरमुख गुण में हाजी है मलहम मैं कड्ढे धोए। सच वणजै रंग स्यों सच सौदा होए। टोटा मूल ना आवै लाहा हर पावै सोए। नानक तिन सच वणजिया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी सलाही सच सलाहना स सच्चा पुरख निराले। सच सेवी सच मन वसै स सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी आराध्या से जाय रले सच नाले। स सच्चा जिनी ना सेव्या से मनमुख मूड बेताले। ओहो आल पताल मोह बोल दे जो पीतै मद मतवाले। श्लोक महला तीजा गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। भाणे चलै सतगुरु कै ऐसा सिंगार करे। सच्चा शब्द पतार है।

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओन तिन्ना दरगे ले छाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा।

आस कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां।

नानका जे करण कारण समरथ पौड़ी पंजवा लै फाहे राती तुरै प्रभ जाने प्राणी तकै नार पराइया लुक अंदर ठाणी सन्नी दिन विखम थाए मिठा मदमाणी करमी आपो अपनी आपे पछताणी अजराइल फरेस्ता तिल पीड़े कहानी सलोक महला पंजवा सेवक सच्चे साह के सही प्रवान दूजा सेव नानका से पच पच मोए अजान महला पंजवा जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा ते आए पौड़ी पंजवा नारायण लया ना ठूंगड़ा पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या नित विसो चखे निंदा करता पचमवा विच देही पखे सच्चे साहिब मारिया कौन तिसनो रखे नानक ते शरणागति जो पुरख्या लखे सलोक महला पंजवा नरक कोर बहु दुख घने अकिरत घना का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम महला पंजवा अवखत सबे कीतियन निंदका दारू नाहे आप लाए नानका पच पच जोनी पाहे पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरै सतगुरु हर तन सचिया खुट सब आंदे से मिट गए जमका पौ छुट काम क्रोध बुरे आईया संग साधु टुट विण सचे दूजा सेवंदे होए मरसन बुट नानक कौ गुर बख्शिया नामै संग जुट सलोक महला चौथा तपा ना होवै अंदरों लोभी नित माया नो फिरै जज मालिया अगों दे सद्या सत्तै दी भिख्या लै नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग

जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धनी है। श्लोक महला चौथा। मन मुख मूलों भुलिया, विच लब लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरै, शब्द ना करै विचार। शुद्ध मत करतै सब हिर लई, बोलन सब विकार, दितै कितै ना संतोखी है, अंतर तिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मन मुखा नालों टुटी भली, जिन माया मोह प्यार। महला चौथा। जिन्ना अंदर दूजा पाओ है, तिन्ना गुरमुख प्रीत ना होए, ओह आवै जाए पवाई है, सुपने सुख ना कोए। कूड़ कमावै कूड़ उचरै, कूड़ लग्या कूड़ होए, माया मोह सब दुख है, दुख बिनसै दुख रोए। नानक तात लवै जोड़ ना आवई, जे लोचै सब कोए। जिन कौ पोतै पुन पया, तिन्ना गुर सब दी सुख होए। पौड़ी महला पंजवा। नानक विचारै संत मुन जना, चार वेद कहंदे, भगत मुखै ते बोल दे, से वचन हो मंदे, प्रगट पहारै जाप दे, सब लोग सुन दे, सुख ना पायन मुगद नर, संत नाल खंदे। ओए लोचन ओना गुणै नो, ओए अहंकार सड़न दे, ओए विचारे क्या करै, जां भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म, से किसै ना संदे, वैर करन निर्वैर नाल, धर्म न्याय पचंदे। जो जो संत सरापिया, से फिरै पवंदे, पेड़ मुडाहूं कटिया, तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया, पन्नन कर्ण समरथ, प्रभ सदा संभालै मित्र तू, दुख सबाया लथ। महला पंजवा। खुदियावंत न जानई, लाज को लाज कबोल, नानक मांगै नाम हर, कर कृपा संजोग। पौड़ी। जेवे हे कर्म कमावंदा, ते वे हे फलते, चबे तत्ता लोह सार, विच संगै पलते। कत गलावा चालिया, तिन दूत अमल ते, काई आसना पुनिया, नित परमल हिरते, किया ना जाने आकिरत कान, विच जोनी फिरते। सबे तेरा निखुटिया सो, हिर लिया स्तरते, विजन कलै ना देवता, तां लया करते। जो जो करते अहम मेयो, चढ़ धरती पड़ते। श्लोक महला तीजा। गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावै हृदय हर परोए। पवित पावन परम बिचारी, जे ओस मिलै तिस पार उतारी। अंतर हर नाम बासना समाणी, हर दर सोभा महा उत्तम बाणी। जे पुरख सुनै सो होए निहाल, नानक सतगुर मिलै पाया नाम धन माल। महला चौथा। सतगुर के जी की सार ना जापै, के पूरै सतगुर भावै। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै, जो सिखा नो लोचै सो गुर खुशी आवै। सतगुर आखै सो कार कमावन, सो जप कमावै। गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावै, विण सतगुर के हुक्मै जे गुर सिखा पासो कम कराया लोड़े। तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवै, गुर सतगुर अगै को जियो लाए कालै। तिस अगै गुर सिख कार कमावै, जे ठगी आवै ठगी उठ जाए। तिस नेड़ै गुर सिख मूल ना आवै, ब्रह्म विचार नानक आख सुनावै। जीवन सतगुर के मन मन्ने, कम कराए सो जंत महा दुख पावै। पौड़ी। तू सच्चा साहब अत वड्डा, तुहे जेवड़ तू वड वड्डे, जिस तू मिलै सो तुद मिलै, तू आपे बख्श लै लेखा छड्डे। जिसनो तू आ मिलाएंदा, सो सतगुर सेवे मन गड़ गड्डे। तू सच्चा साहब सच तू, सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे, ज्यों पावै
त्यों रख तू सचया। नानक मन आस तेरी वड वडे सुध गौड़ी की वार महला पंजवा। राय कमाल दी मोई दी की वार की धुन उपर गावनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पंजवा। हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान। तिस जन कै बलिहार नै जिन जपया प्रभ निर्वाण। जन्म मरण दुख कटिया हर भेटिया पुरख सुजान। संत संग सागर तरे जन नानक सच्चा तान। महला पंजवा पलके उठ प्राहुणा मेरा कर आवो। पाओ पखाला तिसके मन तन नित पावो। नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो। गृहो तन सब पवित्र होए हर के गुण गावो। हर नाम वापारी नानका वडभागी पावो। पौड़ी जो तुद पावे सो भला सच तेरा पाणा। तू समय एक वरतदा समय समाणा। थान थन अंतर रव रहया जी अंदर जाना। सा संग मिल पाई है मन सचे पाणा। नानक प्रभ शरणागति सत सत कुरबाणा। सलोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहेब सच्चा सो धनी। नानक सतगुर सेव चढ़ बोइथ पौजल पार पाओ। महला पंजवा वाउ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार। नानक नाल ना चलनी जल बल होए शार। पौड़ी से उबरे जगे विच जो सच्चा रखे। मोह डिठे तिनकै जीवी है हर अमृत चखे। काम क्रोध लो मोह संग सादा पखे। कर कृपा प्रभ अपनी हर आप रखे। नानक चलत ना जापनी को सकै ना लखे। सलोक महला पंजवा। नानक सोई दिनस सुहावड़ा जित प्रभ आवै चित। जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा नानक मित्राई तिस स्यों। सब किश जिसकै हाथ कुमित्रा से ही कांडी है। एक वेखना चलै साथ। पौड़ी अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई। जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई। सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई। तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। सलोक महला पंजवा। डिठड़ो हबठाए ऊना काई जाए। नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा दमनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे। वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी। पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी। जो जन पेटै साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी। मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी। तोसा दिचै सच नाम नानक मेहमानी। सलोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख। नानक सच्चे नाम बिनु किसै ना लथो दुख। महला पंजवा मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच ना लद्या। नानक से साबास जिन्नी गुरमल एक पछाणिया। पौड़ी जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा। पत ते उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा। भगत वछल तेरा बिरद है जो जुग वर्तंदा। नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा। सलोक महला पंजवा। चिड़ी चोहकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग। अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। महला पंजवा
ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਹੀ ਜਹ ਤੂੰ ਆਵੈ ਚਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋ ਮਿਤ ਪੌੜੀ ਹਰ ਤਨ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਹੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਏ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਧਾਤਾ ਮਨ ਤਨ ਪੀਤਰ ਮੌਲਿਆ ਹਰ ਰੰਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਭ ਦੁਖੈ ਖਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਇੱਕ ਪਛਾਤਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਅਤ ਕੰਠ ਬ੍ਰਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਹਿ ਗੰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਸਾਰੇ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਮਰ ਪੇ ਨਾ ਸਕੈ ਮੂਲ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਜੋ ਤਸਕਰ ਉੱਪਰ ਸੂਲ ਪੌੜੀ ਸੁਖੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਅਵਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਪੂਰਿਆ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਭਣਿਆ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਬਣਿਆ ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ ਬੰਦ ਪਉ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜਣਿਆ ਤੁਸ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੈ ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲ ਦੋਜਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਸੂਲ ਪੌੜੀ ਤਿਸੈ ਸਿਰੇ ਵੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ ਜਿਸਦੈ ਨਾਉ ਪੱਲੈ ਐਥੈ ਰਹੋ ਸੁਹੇਲਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਘਰ ਬੰਧੋ ਸਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗੜ ਥੰਮ ਅਹੱਲੈ ਓਟ ਲਹਿਓ ਨਾਰਾਇਣੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲੈ ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਨ ਹਰ ਤਿਸ ਦਰ ਗੈ ਮੱਲੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਪੌੜੀ ਉਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈਐ ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਮਰਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤਿਸੈ ਹੀ ਜਰਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੈ ਝਰਨੇ ਪੇਖ ਦਰਸਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੇਵਿਐ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਛੁਟੈ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰਉ ਨਾਮ ਪੌੜੀ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਲੱਦਾ ਸਾਦਾ ਸਰਨੀ ਜੋ ਪਵੈ ਸੋ ਛੁਟੈ ਬੱਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਬਨਾਸੀਐ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਦੱਦਾ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ ਪੜ ਬੁਝ ਸਮੱਦਾ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਣੀ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਦਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਹੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰੈ ਅਵਤਾ ਲੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਏ ਵਿਸਾਰਿਐ ਸੁਖ ਕਨੇਹਾ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਖੈ ਕੌੜਤਨ ਸਗਲ ਮਾਹੇ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ ਨਾਨਕ ਜਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੀਠਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਪੌੜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾ

गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जाने आ, तब लोगे काहे दुख माने आ। हम अपते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात कहू स्यो नाही। पत या पत ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग भज केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगर फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ। मुंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ ना गईया काई। बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात इशनान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही। जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बवागर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ म

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती हो कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदा स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं ने हो रहाओ। साहन सत करे जी अपने, सोर मैये को मिले न सुपने। तन मन धन गृहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कहे कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया ब्यापिया सगल संसार, बिखिया लै डूबी परिवार। रे नर नाम चौड़ कत बोड़ी, हर स्यो तोड़ बिखिया संग जोड़ी रहाओ। सुर नर दा दे लागी आग, निकट नीर पस पी वसना झाग। चेतत चेतत निकस्यो नीर, सो जल निर्मल कथत कबीर। गौड़ी कबीर जी जेह कुल पूतना ज्ञान बिचारी, विधवा कसना पई महतारी। जह नर राम भगत ने सादी, जन्मत कसना मोह अपराधी रहाओ। मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना कैसे कुबज करूप। गौड़ी कबीर जी जो जन लेहे खसम का नाओ, तिन कै सद बलिहारे जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावै, सो पाई मेरे मन पावै रहाओ। जेह कट राम रया परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रवै कबीर। गौड़ी कबीर जी गगन रसाल चुवै मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी। ओवा को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ। सहज कलालन जव मिले आई, आनंद माते अंदर जाई। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अन पौ पाया। गौड़ी कबीर जी मन का स्वभाव मने व्यापी, मने मार कवन से थापी। कवन सो मोन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। कहो कबीर जो जाने पे ओ, मन मद सूदन त्रिपवन दे ओ। गौड़ी कबीर जी।

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कै चाबक माराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम रा

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरे कहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर।

और आ गौड़ी ग्वालेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख मांगत दुखिया गै आवै, सो सुख हमो न मांगया पावै। बिखिया जो सुरत सुखयासा, कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते इस ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सन कादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुरप्रसादी जय दियो नामा, भगत कै प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आमन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेओ, एह मन लीन पए सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन का ओ रव रहे कबीरा। गौड़ी ग्वारेरी अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पए लिव लागे रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होहे नायाना, कहे कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोरठ पी, रे जीन लज लाज तोय नाही। हर तज कतकाहू के जाही रहाओ। जा को ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोही। सो साहेब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। कवला चरण सरण है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निजपत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पे खो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। फासन की बिद सब को जानै, शूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचार है, सूतक तने ना होई। गौड़ी झगरा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सौ काम। रहाओ एहो मन बड़ा के जा सौ मन मानिया। राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो पाया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। राग गौड़ी चेती

आंधी पाछे जो जल बरख तह तेरा जन पीना, कह कबीर मन पया प्रगासा उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जस सुने ना हर गुण गावै बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए जो प्रभ किए भगत बाहज, तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी तह निंदे जे गंगा यानी, बैठत उठत कुटलता चाल आप गए और नहूं कहल। छाड़ कु चर्चा यान ना जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न मान। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिन को देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जीवत पितर ना माने को मुए सराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल पी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए अपन कया ना लेही। सर जियो काटे निर्जियो पूजे, अंतकाल का उपहारी। राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया, बिखिया सुल पटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन समाया। अंजन माहे निरंजन रही है, बौन ना पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्त्र रखो। इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल शेदी, प्रगटिया पद प्रगासा। सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निचल सिव कर बासा। तिन बिन बाणै तनख चढ़ाई है, इह जग बेदिया भाई। दैद सिर बूंडी पवन चुलावै, डोर रही लिवलाई। ओन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी। कहो कबीर अनपव के देखिया, राम नाम लिव लागी।

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्ज सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी। पई निरासी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरनी लाग रहो, पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बो फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बढ़म ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो भरम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम करका, जी आए पावै मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्तन उप ना पाई। कहत कबीर नवै कर मूसे, दसवें तत् समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। रा गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई, अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंगा छेद, तुरक तरीकत जानी है, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेट ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रह, ता होए न खियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कते ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमसे सोई, काट फूटे काट कवे ना होई, तां काट माहे काट जाओ पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है, परम सियानप एहे, चचा रचित चित्र है पारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा, रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगर ही पावा, नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेराओ पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कते ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करई पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जाओ कोई दूर न पर।

ससा सोनी का कर सो दो, कट परचा की बात न रो दो, कट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंत्र भवन राओ, खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा, ससा सो सहसे सवार सोई सही संदेह निवार अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब एह त्री

है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिर सब लोग ता कारण व्यापै बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावै सोग मिटै सब ही सुख पावै। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुध होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थित्ती कबीर जी की। सलोक पंद्रह थित्ती सात वार कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पे ओ आपे करता आपे दे। थित्ती अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोविंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदन जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आदि पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावै। साध संगत उपजै विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

पंच पंच तत् विस्थार कनक कामनी जोग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवै कोए जरा मरण दुख फेर ना होए छट खट चक्र शहू दिस्ताए बिन पर चै नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खे मांगै रहो कर्म तर्म की सूल ना सहो सातै समकर बाचा जान सातै सतकर बाचा जान आत्म राम लिहो प्रवान छूटै संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं कुल महान निदराया गुरगम ज्ञान बतावै भेद उल्टा रह अपंग अशेद नौमी नवै द्वार कहो साध बहती मनसा राखो बांध लो मो सब बिसर जाहो जुग जुग जीवो अमर फल खाहो दसवीं दैदस होए आनंद छूटे परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा बारस बारह उगवै सूर अहनस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ तेरस तेरा यगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसै मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरै कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर मैं रमै कबीर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मैं वाए सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेह सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मनमत वारो पीवनहार मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए बुधवार बुध करै प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सुधा करै बृहस्पत बिख्या दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग कट मैं दूजी आन तौ लो महल न लाबे जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग

राम कहत जन का स्ना तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्र सैन को राज दिए। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, नामे के स्वामी ते उतरे। राग गौड़ी रविदास जी के पदे, गौड़ी गुवारे री। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, मेरी संगत पोच सोच।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरे प्रमफास, प्रेम

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए।

तू सर्वे पूर रहया लिव लाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी भीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूपया पारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश ली जी ली जय रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोह लै।

गावो गावो का मणि बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जां सह मिलिया तां जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्य आप सवारे, होरन कार्य ना होई, जित कार्य सतसंतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। पणत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नदर करे सासो आगन होए। आसा महला पहला, गृहो बन समसर सै सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ। सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जग दिसै अंश। जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवातो, राजन राज सदा बिकसंतो, जिस तू राखै कृपा तार, बूढ़त पाहन तारै तार। त्रिभवन मैं जोत त्रिभवन मैं जानिया, उल्ट पई कर मैं आणिया, अहनस भगत करे लिव लाए, नानक तनकै लागै पाए। आसा महला पहला, गुरमत साची हुजत दूर, बहुत सियाण भला गै धूर, लागी मैल।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हम मैं माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राख अमृत चाख, सतगुर सेव अमृत शब्द भाख, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग, हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

बुरा पला कहो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अड़सठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय लग

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहार ता कह जाओ, नानके करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीव

काया ब्रह्मा अमन है धोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल, ऐथे उथे निभि नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर।

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर से मिल ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवी रहना। दुख सुख देवै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या पेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूतना कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपुर जाहे। गुर दीखिया ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या पार। हम पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवे। मन अठ कीचै अंत विगोवे रहाओ। मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लहा किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी। ता पर उपकारी, जा पंचरासी ता तीर्थवासी। घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जग हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जग हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हौ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवै पतार तव नानक कंतै मन पावै छोड़ वडाई अपने खसम समावै रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी।

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरण पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइस तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फलकाम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो वंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखे ना पवै ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रती ले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जायनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सनाहे आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख पूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़ वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजिया ले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रहै जैसे भवै उदासे। मन मेरा दयाल से तीथिर न रहै, लोभी कपटी पापी पाखंडी, माया अधिक लगै रहाओ। फूल माला गल पैरोंगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोंगी सिंगारो। पंच सखी हम एक पता।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवै पौन होवै सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरै रावै लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे ना अवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरै दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरै इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरै परमेसर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंधावै कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे

अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैसाओ कल्पते आगी बादं सिंगी शब्द सदा तुन सोहै एनिस पूरे नादं पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेपूतं हर कीर्त रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली ज्योत हमारी समया नाना वर्णा नेकं कहो नानक सुन पार्थर योगी पार ब्रह्म लिवेकं आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै कर करनी कस पाई है पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है बाबा मन मत वारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लिवलागी शब्दा नाहद गहया रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत कावा पारी होवे कैमद शूशै पाओ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीपत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे क्या सिफती रता सद बैरागी जुवे जन्म ना हारे कहो नानक सुन पार्थर योगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोसना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैकी दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोसना होई रहा हो सकता सीहो मारे पै वगै खसमै सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड़ियाई जे को ना उतराए वड्डा साद करे मन पाणे खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने मर मर जीवै तक्ष पाए नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै सब सचै बैराग खर दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर कै दर्शन मुक्त गत होए साचा आवसै मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार निगुरे कहो गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर कै शब्द सुख सांस शरीर गुरमुख ता कहो लगे ना पीर जम काल तिस नेड़ ना आवै नान गुरमुख साज समावै आसा महला तीजा शब्द मुवा विचों आप गवाए सतगुर सेवे तिलना तुमाए निरपव दाता सदा मन होए सच्ची बाणी पाए भाग कोए गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे पूरे गुर कै शब्द समाहे रहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम वखाणे साची बाणी सूचा होए गुणते नाम प्राप्त होए गुणया मोलक पाए ना जाहे मन निर्मल साचा शब्द समाहे सेवड़ भागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया

राय। ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहि समाए, नावै जेवड़ होर धन नाही कोए, जिसनों बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे वजाए, एहो मन अंधा बोला है, किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले ना सो जी पाए, गुरमुख भगत कड़चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आवसे मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, निहचल भगत हर सो चित लाए, भगत रते तन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवां काफी महला तीजा, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, हर कै पाणे सतगुर मिले, सच सोजी होई, गुर प्रसादी मन वसै, हर बुझै सोई, मैं सहो दाता एक है, अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै, ता सदा सुख होई रहाओ, इस जोग में निरपो हर नाम है, पाईए गुर विचार, बिन नामे जम कै वस है, मन मुख अंध गवार, हर कै पाणे जन सेवा करे, बुझै सच सोई, हर कै पाणे सा लाही है, पाणे मन्या सुख होई, हर कै पाणे जन्म पदार्थ पाया, मति उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा, घर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, तू करता सचियार मंडा साई, जो तौ पावै सोई थिसी, जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन्ना वर्तन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जान आए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवे

जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ। जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्टि जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ। मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग, दूजे पाए पवै बिख माया, भाग हीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपुरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सह।

खेत मनुआ अस्थर बैल मन जो वो हर सिंचो गुरमत जेत जोगी जंगम सृट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल। आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों तब लग सुमारो नाम। मेरे मन ऐसी भगत बने आई हों हर बिन खिन पल रह न सकौ जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तोने उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाप पसारे कब को हाथ फसारे हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा महला चौथा सतसंगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कड़ चानण अज्ञाना दे राजाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छाओ सोई फल पावो फिर भूख न लग आए। आपे हरे परंपर करता हरे आपे बोल बुलाए सही संत भले तुद पावे जिनकी पत पावे थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वण जलै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवा राग आसा कर अठवें के काफी महला चौथा। आया मरण तो राह हो मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ। पूर्व लिखे डेहे से आए माया चलन अज के कल तुरों फुरमाया। बिरथा जन्म तिन्ना जिनी नाम विसारिया जुए खेलन जग के हो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया दर सच्चे सच्यार महल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है अंदर नाम ते आए हर गुण गाई है। अंतर वसजा नेक मनमुख नहीं पाई है हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है। नानक आपे आप खुआई है गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है। राग आसावरी कर सोलवें के दो महला चौथा सुधंग। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाँ आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं सतगुर मोको हर नाम बताया हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकौ रहाओ। हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन हाँ हर बिन रह ना सकौ हाँ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ रिद तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई
हाँ हर बिन खिन पल रह ना सको, जैसे कर हल बेल रिजाई रहाओ। हमरा मन बैराग बिरक्त पायो, हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह ना सके, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राग सरन जगदीशर प्यारे, मोहे सरदा पूर हर गुसाई, जन नानक कै मन अंध होत है, हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादे, हमें आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख बिमोहत होए, साधक सिद्ध सुरदे मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ। एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गृही तिन होए ना आपे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सदगुर पावे। तप करते तपसी पूलाए, पंडित मोहे लोभ सवाए, त्रैगुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे दे कर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास, जो तू कह है सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। आसा महला पंजवा, ससू

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगारीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा

दुख रोग भय गतंते, मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुर सबदी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अगाए, जन्म दोख परे मेरे पछ है, अब पकड़े।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहने स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टेचाम, इस ऊपरले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइए हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मन न रह कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो न बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको पर मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रहन पई तब अंत न जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, परम परम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुखे अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माही दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा साहो। गुर कृपा ते एह मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई। सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा। सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सरसद ही पर पूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राए, सुख रैण में हानी सहि सुभाए। आसा महला पंजवा, कर कृपा हर प्रगटी आया। मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई। पाहे न जाले जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ। तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया गाए। सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाड़ परानी। जो जन्मे सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ। दिन ते सर

जो तू करै सोई प्रवाण, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवां, निकट जी कै सदही संगा, कुदरत वरतै रूप रंगा। करै ना चुरै ना मन रोमन हारा, अवनाशी अवगात्या गोचर। सदा सलामत खसम हमारा रहाओ, तेरे दास।

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन। आसा महला पंजवा, आनंद बिन ओत परे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया। पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ। नाम निधान जा

साथ पूरा गुरपुरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो एहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ तृप्त गावन सच नाए अठ सठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध कू मैं निकस्यो मेरे भाई रे रहाओ महा अगाह अग्न का सागर गुर बोहिथ तारे रतनागर दुत्तर अंध बिख मेह माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जाप ताप कश युगत न मोरी गुर नानक सरणागत तोरी आसा महला पंजवा ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं ले जाता हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापै चिंद हर रस पीवै अल मस्त मतवारा आन रसा सब हो चेरे रहाओ हर रस की कीमत कही ना जाए हर रस साधु हर सुमाए लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही दे हे नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावै छुटकै दुरमत अपनी तारी होए निमाणी सेव कुमावै ता प्रीतम होवै मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा सुख पावै तू सुख मन नारी रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिख त्यास निवारी दासन की होए दास दासरी ता पावै सो बाहर द्वारी इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी जो एहो मंत्र कमावै नानक सो भौजल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै नाकाम मिल साध संगत पज के

सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। आसा महला पंजवा, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही। तुमरी ओर तुम्हारी आसा, बैठत उठत सोबत जागत, विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ। राख राख सरन प्रव अपनी, अग्न सागर विकराला, नानक के सुखदाते सतगुरु, हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा, हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या, ताप मुआ बिख खाए रहाओ। पाला ताऊ कछु ना व्यापै, राम नाम गुण गाए, डाकी कोचत कछु ना लागे, चरण कमल शरण आए। संत प्रसाद पय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदानित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनसिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पया समटे विसूरे रहाओ। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओह ना बाला बूढ़ा पाई। रहाओ नानक दास शरणाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास, सास संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांस सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूर्ण कर्म, सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे करके चौतीस। आसा महला पंजवा, जा का हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ। कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मत मद सर, ए खेलत सब जुए हारे, सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह भीतर वारे। जन्म मरण चुके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल, गुरपूरै लैखन मैं तारे रहाओ। सब की रेन होए रहे मनुआ, सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकर, दान दे सब जी सुमारे। एको एक आप एक एक, एक है सगला पा सारे, जप जप होए सगल साथ जानो, एक नाम ते आए बहुत उधारे। गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे, तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत या गोचर, एहो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करै चतराई, जा सबके तुझे मजार। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार, देह सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकर अगमे अपार रहाओ। जैसे जनन जठर मैं प्राणी, ओरेता नाम आधार, आनंद करे साह सा सुमार, ना पोहै अगनार। पर तन पर दारा पर निंदा, इनस्यो प्रीत निवार, चरण कमल सेवी दे अंतर, गुरपूरे कै आधार। गृह मंदिर महला जो दिसै, ना कोई संगार,

राज मिलक जोवन ग्रह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगह कामना आवै छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याई है रहाओ महा विचित्र सुंदर।

का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने। उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसाने। संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन। महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु। नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वड़भागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना। सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा। अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावै। मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावै रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया। तृप्त गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता। जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया। वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई। अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगह ढोई। जमपुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया। पहुंचना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा। तहां बिकूता जय कोई ना रखे, ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही, खसमै एवे भाणा। जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संतां टेक

मैं सब जग बौराया ना मिले सुख पाई है। क्या कही है किस आग सुनाई है, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, एत्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किश हुआ, यवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काट्या रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकोरते बहा पकर गुर काढ़ लिए। निरपौ पए सगल पौ मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जीत तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेप

परी रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्यो री। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्यो री। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बनेओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सवारन हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया। कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइय पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास धरी तिन माया। आसा महला पंजवा।

हुकम बूझ रंग रस माने, सतगुर सेवा महा निर्वाणे, जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवाण, नामृता सोई निर्वाण, जा को मिलियो नाम निधाना, भणत नानक ताका पुरख जाना, आसा।

सो स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वसे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइया, एहो अस्थान गुरु ते पाई है। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा। हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै। सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान, सास सब जा का निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, पणत नानक मेरे मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तौ प्रसाद प्रभ सुखी बलाई। मन तन अंतर तुझे ते आई।

पंजवा उठत बैठत सोवत आई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है, श्रवण सुनिजय अमृत कथा, जा सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले लथा रहाओ, कार्य काम बाट घाट जपी जय, गुर प्रसाद हर अमृत पी जय, दिन सरायन हर कीर्तन गाई है, सोजन जमकी वाट ना पाई है, आठ पहरो जिस विसरै नाही, गत होवै नानक तिस लग पाई, आसा महला पंजवा, जा कै सिमरन सुख निवास, पई कल्याण दुख होवत नास, आनंद करो प्रभ के गुण गावो, सतगुर अपना सद सदा मनावो रहाओ, सतगुर का सत शब्द कमावो, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावो।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन ए तुत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहें,

प्रभु की प्रीत पय सकल निदान, प्रभु की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभु की प्रीत सदशोभावंत, प्रभु की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभु की प्रीत एह पवजल तरै, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभु की प्रीत सगलो उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, पूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिनै उपाहा तिनै बिनाहा, रंग रसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इन स्यों प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुरप्रसाद में खोटी डीठी, अगर

वा की महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जाके केवल नाम अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाके एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काट नहारा दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछे सुरदेव अमोग दर्श सफल जा की सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत है टहल दीजे गुणतास। आसा महला पंजवा सगल सुख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साध का संग जिस पेड़त लागे प्रभ रंग। गुरप्रसाद ओ आनंद पावे जिस सिमरत मन होए प्रगासा। ताकि गत में तो कहन ना जावे रहाओ। वर्त नेम मज्जन तिस पूजा वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा। महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाके हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले भवन पतत पुनीत ताकि पगरेन। जाको पेट्यो हर हर राय ताकि गत में तो कथन ना जाए। आठ पहर कर जोड़ते आवाओ उन साधा का दर्शन पावाओ। मोहे गरीब को लेहोर लाए नानक आए पै सरनाए। आसा महला पंजवा आठ पहर उद किस नानी सद ही भोग लगाए सुगयानी। बिरथा काहू छोड़े नाही बहुर बहुर तिस लागे पाई। साल ग्राम हम

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवा पंच पदा, जेह पेंड है लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसै अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत।

तरिया संसार हर का नाम मन आधार। चरण कमल गुरुदेव प्यारे, पूजे संत हर प्रीत प्यारे। रहाओ जा कै मस्तक लिखिया भाग, कहो नानक ता का थिर सोहाग।

की तप्त हरि। पलो पयो प्रे कहया मान्या, सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार, ओह अवनासी अगम अपार। ले पखा प्रे चलो पाए, पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत, क्या जाना क्यों पानी कंत। मोहे अनाथ गरीब ने मानी, कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा, सुख सहज मेरा तन सोहागा। कहो नानक मोरी पूर्ण आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचय मनमुख मूह राखा गुरु नानक बहा पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसर स्वामी इहां उहां कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भव ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिय रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली भांत सब सहि समाही। जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साई है साचा सोई। सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभु के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुंडित गाई है। दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है।

बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर सा

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां, सर्व सुखा मैं पालिया हर जेवड ना कोई, गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटै महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सत सार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां, साई अलख अपार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाँ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंध घणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया से मरण में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास हरे आओ तैसा संसार सब, नानक बंधन काट मिलावो आप प्रभ। आसा महला पंजवा, हब्बे थोक विसार हिको ख्याल कर, झूठा लाहे गुमान मंत निरपतर। आठ पहर सा लाहे सृजनहार, तू जीवा तेरी दात कृपा करो मूं रहाओ। सोई कम कमाए जित मुख उजला, सोई लगे सच जिस तू देहला। जो ना टहंदो मूल सो कर दास कर।

पतवंते आपणे प्रभाणिया नित केल करंते। दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहली ने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाव पूरे गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाईए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाईए मन माहे निधाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिला एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिया थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहेब की मनिया, नाम जिस कह उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकर सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संता की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठै रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिए एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेट हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तउ लो जो मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सवाओ रहाओ।
सगन अप सगन तिस कहो लग है जिस जीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवई जो हर प्रभु पावे पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम पै बिनसे प्रम मोह गए को दिसै ना बिया नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो आगै पावो के ना पावो एक दा तार सगल है जाचक दूसर कह पह जावो हाउ मांगो आन ल जावो सगल छत्रपत एको ठाकर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पे ना सको दर्शन खोज खोजावो ब्रह्मादिक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिन कौ महल दुलभावो अगमय अगमय अगाध बोध कीमत परै ना पावो ताकि सरन सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो गावो जाग सवारी संग चलन कौ तोसा दीना गोविंद नाम के ब्योहारी अवर बिसारी बिसारी।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे।

कृपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां को बिखमगार तोरै आस प्यास तो हो।

गुण गोविंद गावो, आन दिनो प्रभति आवो, प्रम पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै, आसा महला पंजवां। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवां। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल री दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू, खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू, खिनहू तजायो। खिनहू जोग ता बौ पूजा, खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवां, कर सतारवां, आसावरी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड़ नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवां। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुरचरान हां, तो मिलिया गुर कृपान मेरे।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन सच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभु लाए ता को लागे हो मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुख आगे। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। एत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लै घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हमें कौरा रहाओ। एहो मन मुग्द कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पे लै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रभया पै। मन बैरागी हम मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत रख है। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हमें ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यन त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अन हद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कही है बिन गुर राम नाम कतल है। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला जो भावे त्यों रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख विण गुर शब्द जन्म के लेख देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम समसर अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि त्यान छूटे गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग। आसा महला पहला एक तुगी गुर सेवे सो ठाक जाने दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान। हों मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सौदा अन विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी। बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद अहंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंद ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर। से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़। महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया। कर कर देखे वेस रहाओ जदों सियां वी आहियां। लाड़े सोहन पास ही डोली चढ़ आईयां। दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया। गरी शुहारे खांदियां, मन से जड़ियां। तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया। तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए। जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए। अगों दे जे चेती है, तां कायत मिलै सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए। चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेत्यो, हुण कहण ना मिले खुदाए। एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछे सुख। एक ना हो लिखिया, बैबै रोवै दुख। ज्योत पावै सोथी है, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े। कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़। कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके। एथे दिसै नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई। एक कड़ी मैं थापो थापे, जरवण देवे पाई रहाओ। कहां सो घरदार मंड मेला, कहां सो बंकसराई। कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी विगुती, इन जर कणी खुवाई। पापा बाजो होवै नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किन ना परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई। जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी। एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी। आपे करे कराए करता, किसनों आख सुनाई है। दुख सुख तेरे पाना होवै, किसते जाय रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा काफी महला पहला। कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ। नीत नीत कर बांधी है।

सब नावै नौ लोच दी जिस कृपा करे सो पाए। बिन नावै सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए। तू बेअंत दयाल है तेरी सरनाई गुरपुरे ते पाई है नामे वड्याई। अरहाओ अंतर बाहर एक है बहुबिध से ट्यो पाई। हुक्मे कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई। बुझना या बुझ

कहो नानको सब दुख मिटे प्रभेटे परमानंद। आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा संता की जात एको अंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख बिसरै प्यारे सो क्यों तजना जाए। एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए। जो जन राते राम सिंह प्यारे अंत ना काहू जाए। हर जिनी चाख्या प्यारे तृप्त रहे गाए। अंचल गहया साध का नानक पैव सागर पार पराए। जन्म मरण दुख कटिया प्यारे जा पेट हर राय। सुंदर सुगड़ सुजान प्र मेरा जीवन दर्श दिखाए। जो जी तुझते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए। जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कहन न जाए। साची प्रीत ना टुटई प्यारे जो जुग रही समाए। जो तुत पावे सो पला प्यारे तेरी अमर न जाए। नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सहि सुभाए। साबे तुम ही जानते प्यारे किस पे कहो सुनाए।

जो तू करावै सो करी प्यारे, अवर किश कर न जाए। दिन रहण सब सुहावने प्यारे, जे जपिए हर नाओ साची, साच साई कार कमावनी प्यारे, तुरमस्तक लेख लिखाए। एको आप वर्तदा प्यारे, कटकर रहा समाए, संसार कूप ते उधर लै प्यारे, नानक हर शरण आए। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एको अंकार सतगुर प्रसाद। ससै सोए सिरठ जिन साजी, सबना सहव एक भया, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल पया। मन काहे पूले मूड मना, जब लेखा देवै बीरा, तो पड़िया रहाओ। ईवड़ी आदि पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई, इना अखरा मैं जो गुरमुख बूझै, तेसर लेख न होई। ऊड़ै उपमा ता की कीजै, जा कांत ना पाया, सेवा करै सही फल पावै, जिनी सच कमाया। नंगे ज्ञान बुझै जे कोई, पढ़िया पंडित सोई, सर्ब जिया मैं एको जाने, ताहो मैं कह ना कोई। ककै केस पुंडर जब हुए,

दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। तदै तार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जन रंग किया, तिसदा दिया सब नी लिया, कर्मी कर्मी हुकुम पया। नन्ने नाहा भोग नित भोगै, ना डीठा ना संभलिया, गली हों सो हगण पहने, कंतन कबहू मैं मिलिया। पप्पै पातशाहो परमेसर, वेखण काओ परपंच किया, देखै बूझै सबके जाने, अंतर बाहर रव रहया। फफै फाही सब जग फासा, जमकै संगल बंद लया, गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। पब्बै पालै ऐसे फल पावै, गुर प्रसादी जिन को पौ पया। मन मुख फिरै ना चेतै मुड़े, लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतव्या। काया पीतर यवरो पड़या, मम्मा अखर विसरिया। यही जन्म ना हो वी कदी, जेकर सच पछाण। गुरमुख आखै गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। आरारै रव रहया सब यंत्र, जेते किए जनता। जन तो पाए तंदै सब लाए, कर्म होवा तिन्ना मिलया। लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना समकर सहना, पाणै ताकै हुकुम पया। ववै वास दियो परमेश्वर, वेखण कहो जिन वेस किया, वेखै चाखै सबके जाने, अंतर बाहर रव रहया। अड़ाड़ै राड़ करै क्या प्राणी, तिसै त्यावो जे अमर होवा, तिसै त्यावो सच समावो, ओ सिविटों कुर्बान किया। हा है होर ना कोई दाता, जियो पाए जिन रिजक दिया। हर नाम ते आवो हर नाम समावो, आंदन लाहा हर नाम लिया। आयड़ै आप करे जिन छोड़ी, जो कुछ करना सो कर रहया। करे कराए सबके जाने, नानक सायर इव कहया। राग आसा महला तीजा पट्टी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अयो अंगै सब जग आया, काखै कंगै काल भया, रीरी लली पाप कमाणे, पढ़ अवगण गुण विसरिया। मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरा सिर रया रहाओ। सिद्धंग आया सिमरै नाही, नन्ने ना तुद नाम लया, छजै चीजै इन समूड़े, क्यों छूटै जम पाकड़िया। बब्बै बूझै नाही मूड़े, भरम पुले तेरा जन्म गया, अनहोंदा ना उतरायो पादा।

अंतरयात्मा ब्रह्म न चीनिया माया का मोह दाय पया ककै काम क्रोध परम्यो मूढ़े ममता लागे तू धर विसरिया पड़े गुणे तू बहुत पुकार है विण बूझे तू डूमुआ तत्ते तामस जल्यो मूढ़े थथे थान प्रहट होवा कगै कर कर फिरे तू मूढ़े ददे दाना तुद लया पप्पै पार न पव ही मूड़े पर पई तू पलच रहा सचा आप खवायो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बै पव जल डुबो मूड़े माया विच गलतान पया गुरप्रसादी एको जाने एक कड़ी मैं पार पया ववै वारी आईया मूड़े वास देओ तुद विसरिया ए वेला ना लैसै मूड़े फिर तू जम कै वस पया चजे कदे ना चूरे मूड़े सतगुर का उपदेश सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई इन गुरे का है ना गुरा तद तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख होवे ता हर रस पीवे जुगा जुगंतर खाहे पया गगै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुणे सब बख्श लया हा है हर कथा बुझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पड़े तेता दुख लागे विन सतगुर मुक्त ना होई हरारे राम चित कर मूड़े हृदय जन कह रव रया गुर प्रसादी जिनी राम पछाता निर्गुण राम तिनी बूझ लया तेरा अंत ना जाई लख आया कथ ना जाई हर कथया नानक जिन कौ सतगुर मिलया तिनका लेखा निबड़िया रागया सा महला पहला शांत कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिरली अल्ला राम धन पिर नेहो कणा रसप्रीत दयाला राम धन पिर मेला हुए स्वामी आ प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिर कै सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख विकसी मुंद मनियो माहो मुंद सहज उस लुनड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मानता हर भावै प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाणै ता प्रभ जाणै गुणे वसै अवगुण नसै तुद बाज एक तैलो रहना रहना साका कहन सुनना तीजय नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजय सखी हो सहेलड़ियो मेरा पिरवण जारा राम हर नामो वणजड़िया रस मोलिया पारा राम मोला मोलो सच कर टोलो प्रपा वै ता मुंद पली एक संग हर कै करे रलिया हों पुकारी दरखली कारण कारण समर्थ श्री तारो आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागनो शब्द अवसादारे हम कर साचा सोहेलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यो पावै त्यो रावै तन मन प्रिया गै शब्द सुभागै कर अमृत फल पावै बुद्ध पाठ न पाईऐ बहु चतर आईऐ पाए मिले मन पाणे नानक ठाकर मीत हमारे हम नाही लोकाणे आसा महला पहला अनहदो अनहद वाजै रोण चुनकारे राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारे राम आन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल कर पाया आदि पुरख परंपर प्यारा सतगुर लख लखाया आसन बैसन थिर नारायण तित मन राता विचारे नानक नावरते बैरागी अनहद रोण चुनकारे तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना प्रदाना जप तप कर कर संजम।

माल जोबन छोड वैसी रहो पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया। नह जाए किरत मिटाया, फाथो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायण। सुखो दुख पए नित पाप कमायण, पापा कमाने छड़े नाही लै चले कत गलाविया। हर चंदौरी देख मूठा कूड़ से जा रावया, लभ लोभ अहंकार माता गर भया समायण। नानक मिर्ग अग्ञान बिनसे न मिटै अवन जायण, के मिठै मख मवा क्यों लय उडारी। हस्ती गर्त पया क्यों तरिया तारी, तरन दुहेला पया खिन मैं खसम चेतना आयो। दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो, गुजा कमाना प्रगट होवा ईत उतै खुआरी। नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभ की चरणी, कंठ लगाए लिए ते ठाकर सरणी। बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया सा संगत आप होवा आप जग तराया। राख लिए रखण हारे सदा निर्मल करणी, नानक नरक ना जाहे कबहू हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती, रावो सवा परणा प्रभ संग सोहंती। संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सरैणी रावी है, सा साच तार जीवा प्रापे खर गुण गावी है। बिरहा लजाया दर्स पाया आम्यो दृष्ट सिंचंती, बिनवंत नानक मेरी इच पुन्नी मिले जिस खोजंती।

जल जल रोवै बपड़ी चढ़ चढ़ पवै अंगयार नानक जिन करतै कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो बिन सतगुर कने ना पाया सतगुर विच आप रखियो नूं कर प्रगटिया सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला हों विच आया हों विच गया हों में जमया हों विच मुआ हों में दिता हों विच लया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सत्यार कूड़ियार हों विच पापुन विचार हों विच नरक सुरग अवतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच भरियै हों विच धोवै हों में जाति जन सीखोवै हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मूत की सार ना जाना हों विच माया हों में छाया हों मैं कर कर जन तो पाया हों मैं बूझै तांदर सूझै ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै

द्वापर रथ तपै का सत अग्यर्थवा हो, कलयुग रथ अगन का कूड अग्यर्थवा हो। महला पहला। साम कह से तंबर स्वामी, सच मैं अच्छ साच रह सब।

आणा करे कम आण ना सकै रास, जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास। पौड़ी चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमै पाए हुरमत तिसनो अगली, ओ वजो पेदू ना खाए। खसमै करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए, वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाणा खाए। जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा वास, नानक हुक्म ना चलई नाल खसम चलै अरदास। श्लोक महला दूजा।

पहर चोलना गधा नाचै, पैसा भगत करावै। राजा राम ककरिया बरे पकाए, कने बुजन हार खाए रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावै, कीस गलौरे लियावै, कर कर मुसरी मंगल गावै। कछुआ शंख बजावै, बंस को पूत बियाहन चलिया। सोए ने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनोरे संतो, कीटी पर्वत खाया। कछुआ कह अंगार पे लोरो, लूकी शब्द सुनाया। आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी, एको जसै द्वारा। नवे खंड की प्रथमी मांगे, सो जोगी जगसारा।

राम नाम लग उतरे तीरा आसा, बाती सुकी तेल लिखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता, बुझ गई अगन नानक से धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाओ, टूटी तंत ना बजैर बाब, भूल बिगारे अपना काज, कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरे गावन, कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाहीं परम पद दूरे आसा, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राख स्थेते, राम मैया हूं बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा रहाओ, जे अत क्रोप करे करत आया, ता पी चीत न राख समाया, चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा, देहे बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा, हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर, वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है रहाओ, नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कवला दासी, कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम, कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो, आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पाती तोरे मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन कौ पाती तोरे, सो पाहन निर्जियो, पूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ रहाओ, ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ, तीन देव प्रतख तोरे, करे किसकी से ओ, पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ, जे एह मूर्त साची है तो गण हारे खाओ, पात पहत यर लापसी, कर करा का सार, भोगन हारे भोगया, इस मूर्त के मुखशार, मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे, कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय आसा, बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कछ तप ना कियो, तीस बरस कछ देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ, सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरे, चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीरिया सार बह, जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुरप्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछु लै ना गयो, आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो, आसा काहू दीने पाट पटंबर, काहू पलंग निवारा, काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा, अहे रखवाद ना कीजै रे मन, सो किरत कर कर ली।

तुमरा जस मन भावै अल्लै अवल दीन को साहेब जोर नहीं फुरमावै। काजी बोलिया बन नहीं आवै रहाओ और रोजा तरह निवाज गुजारै कलमा पिस्तना होई। सत्र का बा कठी पितर जे कर जाने कोई निवाज सोई जो न्यो बिचारै कलमा अगलै जानै। पांचाओ मुस मुसल्ला बिसावै तब तौ दिन पछानै। खसम पछान तरस कर जी मैं मार मणि कर फीकी आप जनाए अवर कौ जानै तब होए पिस्त सरी की। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोज कस्यो मन माना। आसा गगन नगर एक बूंद ना बरखै नाद कहां जो समाना पार ब्रह्म परमेश्वर माधव परमहंस ले सिदाना।

बजाम नहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पय संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धर रमते मृतक पय दस बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुरप्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यो भूल नहीं कही है रहाओ कौआ कहां कपूर चराए कह बिसियर कौ दूध पी आए सत संगत मिल बिबेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई सागत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम सिंचाई कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण कर खबर ना पाई क्या मांगो कि थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तप्तर सोई बैसंतर जाके कपरे धोई गुरमत रामै नाम बसाई अस्थिर रह ना कथू जाई कहत कबीर सुनोरे लोई राम नाम बिन मुक्त ना होई आसा पहला पूत पिछैरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंबो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा लै गई बिलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार पैस चरावन जाई बाहर बैल गोन करे आई कहत कबीर जो इस पद बूजै राम रमत ते सबके सूजै बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ दो तुके सत एक तुका एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उदर राखिया बहुर लागी माया

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी, सर्व भूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा, आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे कौ चख मार है, काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देखे, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्म्या लेखे रहाओ, साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल कट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

आराम बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ। तन पर एक संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। तन सुहागन जो पी पावै, कह कबीर फिर जन्म न आवै। आसा श्री कबीर जियो के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरा हीरा बेद पवन मन, सहजे रहा समाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहत बानी, हंस होए हीरा ले पछानी। रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई। गुप्ता हीरा प्रगट पायो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात को लखनी, साहुरे पे ये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी। पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी। रहाओ कहो कबीर जब लहरी आई, बड़ी का सुहाग टरयो। लहरी संग पहिया मेरा, जेठी और तरयो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले रखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडियां न मेरा घर तुंदरावा, बिटवे राम रमुआ लावा। रहाओ कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियां मेरी जात गवाई। आसा रहो रहोरी बहुरिया, कुंगट जिन काडे, अंत की बार लहगी ना आडे। रहाओ कुंगट कांड गई तेरी आगे, उनकी गैल तुहे जन लागे। कुंगट काडे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे, हर गुण गाए कूदे अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते, हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा आनंद करे सदकेला रहाओ।

आसा सेख फरी जियो की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ। आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से, तिन धन जने दी माओ आए सफल से। पर्वत

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कार काम हम हर लाए, सो हम करै जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक सवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़े उड़िया वैसे कोसा। तिस पाछा बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन में सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंतना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर, साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै। हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनार हर तन ज्ञान। हर संग लाए ध्याना, हर तन तुल्हा हर तन बेड़ी। हर हर तार पुराना, हर तन मेरी चिंत विसारी। हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नवनिद पाई। हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो टोट न आवै। हल्त पल्त कै संगे लाद खजाना, गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जा का अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर। सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला। संत संग

बास रहो हियर कै संगे पेख मोहयो मन लीला रहाओ। जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरै मनोह जंगीला। मिलबे की महिमा वर्ण ना साकौ नानक परै परीला। गुजरी महला पंजवा मन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपने ही। तीन देव अर कोड़ते तीसा तिन की हैरत कश ना रही। बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ। जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही। कहो नानक साथ ते भागी ओए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवा दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना त्याया। हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया ठाकर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चालै पोरा। ठाकरो तुझ बिन आहे ना मोरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहे तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्श पायो बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम होत जावै प्रभ सेती रंग लाई। मन को एह उपदेश दरड़ावै सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे माया बंद बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति नीकी ए ठहराई। मिल साधु हर जस गावै नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा खिन मैं थापो था पनहारा कीमत जाय ना करी। राजा रंक करै खिन पीतर नीचे जो तरी। त्याई है अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करिए जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का। बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाए सुमाए तै परमा देरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम सुमाराओ तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पई करते की होर आस बिडाणी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै। जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर चित चित वो हर रस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर। नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए। साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवै पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए। गुज पाव को बहुत पर जा रहे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए। जन नानक अंग किया प्रभ करतै जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवै जग कीर्त उंदर गै बैसन पाई है। जमकी त्रास नास होए खिन मैं सुख अंध सेती कर जाई है। जहां ते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा ध्याई रहाओ। मोहे सरन दीन दुख पंज

तू देह सोई प्रभ पाई है, चरण कमल नानक रंग राते, हर दासै पैज रखाई है। गुजरी महला पंजवां, विश्वंपर जियन को दाता, भगत भरे भंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत, खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जाको वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, होए सहाय जिस तू राख, तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा, जन की पै सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर, अपनी कृपा धार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करतै,

आओ मात पिता सुत मीत भाई तिस बना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए कोट जतने उपाव मिथ्या कछ न आवै काम सरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम आगम दयाल प्रभु ऊचा सरण साधु जोग तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुर संजोग गुजरी महला पंजवा आपना गुण सेव सदी रमह गुण गोबिंद सास सास आराध हर हर लह जाए मन की चिंद मेरे मन जाप प्रभ का नाओ सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ साध संग उधार एहो मानो आठ पहरे आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद अटाला शेदा भेद स्वामी सरण ता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सिउ लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्श लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई संका टूट दुखा नेरा।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोबिंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोबिंद रमण काटी है जमजाल। काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत।

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, सेवकर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नाल विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे सिउ लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरै तां शब्द विचारे, तां सच पावै कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिन को कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरै, सावेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुत पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहे सुख पावे, जिन कहो नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सके, जो बालक खीर आधारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन कहो कृपा तुम्हारी, रहाओ सनक सनंदन। नारद मन सेवै, अंदर जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वरतै, एका ज्योत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मंगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी, गावे कथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिन केरा, आप तरे कुलतारी। मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवे, ओह मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी। एहो परपंच खेल किया, सब करता है हर करता है सब गल तारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एक अंकारी। रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस धारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिए, भूमन मैं भूमा। ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते। पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिए। दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिए। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिए। भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती। जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कहिए। आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा। वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा। शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए। गाना सको सीका, नामन मैं तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता। इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा। करमन सिर करमा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बोलावे त्यो बोले स्वामी। कुदरत कमन हमारी, सा संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवा कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਨਾਥ ਨਰ ਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ਪੈ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਣਨਿਧ ਸਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਇਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਰ ਜਗ ਪਵ ਸਿੰਧ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਿਨ ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਮਕਰੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਧਰਣੀ ਧਰ ਪਤ ਰਾਖ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਲਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਿਧ ਮੰਤ ਛੇ ਦੇਹ ਬੁੱਧ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਮੇਟ ਪੁਰਖਿਆਨੰਤ ਸਿਮਰ ਸਮਰੱਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੂਰਨ ਜਾਚੀਐ ਰਜ ਸਾਧ ਮੋਹ ਮਿਥਨ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ ਬਾਸਨਾ ਬੇਕਾਰ ਰਖ ਧਰਮ ਪਰਮ ਬਿਦਾਰ ਮੰਤੇ ਉਦਰ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧਨਾਡ ਆਡ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਨਿਧ ਹੋਤ ਜਿਨਾ ਨਾ ਚੀਰ ਖਲ ਮੂੜ ਖਲ ਮੁਗਦ ਮੂੜ ਕਟਾਕ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਭਏ ਗੁਣਮਤੀਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪ ਮਨ ਧਾਰ ਰਿਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣ ਪਰਮਹੰਸੈ ਰੀਤ ਦੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰਵਣ ਹਰ ਜਸ ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਰ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਤੁਨੀ ਗਾਉਣੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੋਵਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਦ ਨਾਹੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਹੇ ਓਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤੇ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਹੈ ਆਪੇ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਮਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸੁੱਤੇ ਕਵੇ ਨਾ ਜਾਗੇ।

कलयुग में नाम निदान भगती खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम त्याया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेखै, दिखा किनै केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जां कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सिरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा। श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मन मुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाएं दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। महला तीजा, एहो मन केतड़िया, जुग भरमिया, थिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलो पाए, जां हर बख्से ता गुर मिलै, असर रह समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरै न जाए। पौड़ी काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, जो तिस पावै सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाहो वाहो बाणी सच है, सच मिलावा होए, नानक वाहो वाहो करत्या प्रपाया, कर्म प्राप्त होए। महला तीजा, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्र मिलया आई, वड भागिया वाहो वाहो मोह हो कढ़ाई, वाहो वाहो करे सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाहो वाहो कर्म प्राप्त होवै, नानक दर सच्चे सोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभिमानी, परम पूले नदर नायावनी, मनमुख अंध ज्ञानी, उपाय कतन लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी। श्लोक महला तीजा, वाह वाहो करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाहो करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए, वाह वाहो करत्या हर स्यों लिव लाए, वाह वाहो करमी बोले बोलाए, वाह वाहो करत्या शोभा पाए, नानक वाह वाहो सत्र जाए। महला तीजा, वाह वाहो बाणी सच है,

आप दया कर दे नानक वाह वाह गुरमुख पाई है अंधन नाम लाए महला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी नाही जाए जे बहु तेरा लुची है बिन करमै ना पाया जाए जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए जमन मरण ना चुकई हमें विच दुख पाए जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो वई ना ओए दुख सहाहे नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समाहे पौड़ी ढाडी तिसनो वाखी जे खसमै तरे प्यार दर खड़ा सेवा करे गुरसबदी विचार ढाडी दर कर पाए सी सच रखे उरतार ढाडी का महल अगला हर कै नाए प्यार ढाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार श्लोक महला तीजा गुजरी जात गवार जा सहो पाए अपना गुर कै शब्द विचार अंधन हर जप जपना जे सतगुर मिले तिस भौ पवै सा कुलवंती नार सा हुकुम पछाण कंत का जिसनो कृपा कीती करतार ओहो कुचजी कुलखणी पर हर छोडी पतार पै पै मल कटियै निर्मल होवै शरीर अंतर प्रगास मातूतम होवै हर जप गुणी गहीर पै विच बैसै पै रहै पै विच कमावै कार एथे सुख वडियाईया दरगै मोख द्वार पै ते निरपौ पाईऐ मिल ज्योति ज्योति अपार नानक खसमै पावै सा पली जिसनो आपे बख्शे करतार महला तीजा सदा सदा सालाही है सच्चे को बल जाओ नानक एक छोड़ दूजे लगे सा जेवा जल जाओ पौड़ी अंसा अवतार उपायोन पाओ दूजा किया जो राजे राज कमाम दे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लिया निरपौ निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटिया तिथे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जगथिया श्लोक महला तीजा एहो सब किसे आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सोह प्रवान नानक जे को आप गणाएं दा।

पौड़ी। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्पित हर। पूजो गुर के पैर दुरमत जाए जर, साजना कै संग भवजल बिखम तर। सेवो सतगुर देव अगै न मरो डर, खिनमै करे निहाल ऊने सुबर भर। मन को होए संतोख त्याई सदा हर, सो लगा सतगुर सेव जाको करम तोर। सलोक महला पंजवा। लगड़ी सुथान जोन हारे जोड़िया, नानक लहरी लख सयान डुबण दे नामा प्री। महला पंजवा। बन पी हावले हिक साथी लदम, दुख हरता हर नामा। बल बल जाई संत प्यारे, नानक पूर्ण कामा। पौड़ी पाईन सब निधान, तेरे रंग रतिया ना होवी पछोताओ। तुदनो जपतिया पहुंच न सके कोए, तेरी टेक जन। गुर पूरे वाहो वाहो, सुख लहा चितार मन। गुर पै सिफत भंडार करमी पाई है, सतगुर नदर निहाल बहु ना ताई है। रखे आप दयाल कर दासा अपने, हर हर हर हर नाम जीवा सुन सने। सलोक महला पंजवा। प्रेम पटोला तैं सह दिता,

कड़ी मोहत है विसरै नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीर वरियाम किने ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे है।

पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजानिया, जिता जन्मया पार आप पछानिया, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू कमावदे।

प्रभदास का दुख ना खप सकै, फड़ जो नी जुते मथे वाल पछाड़िया नू जा मार्ग मुक्ते। दुख लगै बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखिया नू नानक हर सते। श्लोक महला पंजवां। राम जपो वड भागी हो, जल थल पूर्ण सोए, नानक नाम ते आए बिघन लागै कोए। महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते, जिसनो विसरै नाओ, नानक अन दिन बिलपते, ज्यो सुनै कर काओ। पौड़ी। सिमर सिमर दा तार मनोरथ पूरिया, इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया, पाया नाम निदान जिसनो पालदा। जोत मिली संग जोत रहया कालदा, सुख सहज आनंद उठे तित कर, आवन जान रहे जन्म ना तहां मर। साहेब एवक साहेब सेवक एक एक दृष्टाया, गुर प्रसाद नानक सच समाया। सुध राग गुजरी।

चार पाव दोए सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नकन टूटे कंधन, कोदव को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन महिया, अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रभुडो, अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो, एहो अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो, गत बिन रहन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई, भरम भुलाई जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हो पूजो दूजा नजर न आई। एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बुझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखी अलो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजे मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जंती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरे थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलो

काहे भया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। कर कर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडलो कापड़ी आरे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर।

अंतकाल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै। अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वां केरदा बसै। गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं। रहाओ इच्छस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार सरणं। हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा। गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवभूत सर्वगतं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभं गुरप्रसाद। राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे। रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे। जन नानक के प्रभु

पहले पित गली हर के संत बतावो मार्गो हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा भली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरो दीवानी आवल बावलो तिस कारण हर ढोली है कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगोली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पै हार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार।

प्रेम रसाने जाको उपजी, छोड़ न कतहूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर, हर रस भोजन खाता। अठसठ तीर्थ मज्जन कीनो, साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, जन कीनो सौत बेदाता। सगल समूह लै उदरे नानक, पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा, माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है। अनक प्रकार फिलत बिललाते, मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो, बोझो नी परमाई है। टिकट ना पावै बिन सतसंगत, किसी आगे जाय रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा, साध चरण चित लाई है। संकट घोर कटे खिन पीतर, नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा, ठाकर होए आप दयाल। पई कल्याण आनंद रूप होई है, उबरे बाल गोपाल। रहाओ दोए कर जोड़ करी बेनंती, पार ब्रह्मन त्याया। हाथ दे राखे परमेसर, सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार। कहो नानक जन को बल जाइए, जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देव गंधारी महला पंजवा। अपने सतगुर पै बिनो कहया, पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया, रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी। हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया, कर मस्तक तार साज निवाजे, मोए दुष्ट जो खया। पारि उपकारी सर्व सुधारी, सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता, चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ ना

तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवां प्रभ यह

ज्यों बैसंतर काष्ट मझार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावै गो हर जी को द्वार मिल संगत तज अभमान कहो नानक पाए है परम निधान देव गंधारी पंजवा जानी ना जाई ता की गात रहाओ कह पे खा रहा हूं हाँ कर चतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहा आत गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक।

तिस जन के पग नित पूजी है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सै राम, नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए। हर सुन हर नाम ने सै राम, धरत पताल आकाश है मेरी जिंदड़िए। सब हर हर नाम ते आवै राम, पौन पानी बै संतरो मेरी जिंदड़िए। नित हर हर हर जस गावै राम, वण त्रैण सब आकार है मेरी जिंदड़िए। मुख हर हर नाम ते आवै राम, नानक ते हर दर पै नाया मेरी जिंदड़िए। जो गुरमुख भगत मन लावै राम, बिहागड़ा महला चौथा। जिन हर हर नाम ना चेते ओ मेरी जिंदड़िए, ते मन मुख मूड आने राम। जो मोहे माया चित लाएं दे मेरी जिंदड़िए, से अंत गए पछताने राम। हर दर गए ढोई ना लहन मेरी जिंदड़िए, जो मनमुख पाप लुभाने राम। जन नानक गुरमिल उभरे मेरी जिंदड़िए, हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलहो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए, जो हर हर नाम दृढ़ावै राम। हर जपद्या खेन ढिल ना की जाई मेरी जिंदड़िए, मत के जापै साहो आवै के ना आवै राम। सा वेला सो मूर्त सा घड़ी, सो मोहत सफल है मेरी जिंदड़िए। जित हर मेरा चित आवै राम, जन नानक नाम ते आया मेरी जिंदड़िए। जम कंकर नेड़ ना आवै राम, हर वेखै सुनै नित सब किश मेरी जिंदड़िए। सो डरै जिन पाप कमते राम, जिस अंतर हिरदा सुध है मेरी जिंदड़िए। तिन जन सब डर सुट कते राम, हर निरपव नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए। सब चख मारन दुष्ट कुपते राम, गुरपुरा नानक सेविया मेरी जिंदड़िए। जिन पैरी आन सब कते राम, सो ऐसा हर नित सेवी है मेरी जिंदड़िए। जो सबदू साहेब वड्डा राम, जिनी एक मन एक आरा दिया मेरी जिंदड़िए। तिना नाही किसै दी के चड्डा राम, गुर सेवे है हर महल पाया मेरी जिंदड़िए। चख मारन सब निंदक कंडा राम, जन नानक नाम त्याया मेरी जिंदड़िए। तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम, बिहागड़ा महला चौथा। सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ, तू जाने जो जिए कमाई है राम। हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़िए, सब वेखे मन मुकराई है राम। मन मुखानो हर दूर है मेरी जिंदड़िए, सब बिरथी काल गवाई है राम। जन नानक गुरमुख त्याया मेरी जिंदड़िए, हर हाजिर नदरी आई है राम। से भगत से सेवक मेरी जिंदड़िए, जो प्रभ मेरे मन पाने राम। से हर दर गए पहनाया मेरी जिंदड़िए, अहनिस साज समाने राम। तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए, रंग राते नदर नी साने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए, मिल साधु संगया गाने राम। हे रसना जप गोबिंदो मेरी जिंदड़िए, जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए, तिस मन नाम वसाए राम। जिस पेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए, सो हर तानो निध पाए राम। वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए, नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर रव रहया मेरी जिंदड़िए, पार ब्रह्म प्रभदाता राम। ताका अंत ना पाईए मेरी जिंदड़िए, पूरन पुरख विधाता राम। सर्व जिया प्रतपालदा मेरी जिंदड़िए, ज्यो बालक पित माता राम। सहस सियाणप नह मिले मेरी जिंदड़िए, जन नानक गुरमुख जाता राम। शक्का एक बिहागड़ा महला पंजवा, संत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर काय का चंभव देखिया।

जो करे सो धर्म ने आए राम, हर रंग अखाड़ा पायो न मेरे लाल जी हो आवन जान सवाए राम। आवन ता जाना तने किया जन मेदन सिर जिया, एक ना मेल सतगुर महल बुलाए एक परम पूले फिर दिया। अंत तेरा तू है जाने तू समय रहा समाए, सच कह नानक सुनो संतो हर वरतै धर्म ने आए। आवो मिलो सहेली हो मेरे लाल जियो, हर हर नाम अरा दे राम, कर सेवा पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जमका मार्ग साधे राम। मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगह शोभा पाई है, जिनको विधाता तरो लिखिया तिन्ना रहन दिन लिवलाई है। हौ मैं ममता मोह छुट्टा, जा संग मिले आसा दे, जन कह नानक मुक्त होवा हर हर नाम आरा दे। कर जोड़ो संते कत्र होए मेरे लाल जियो, अबनासी पुरख पूजे हा राम, बहुबिद पूजा खोजी है मेरे लाल जियो। एहो मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन धन सब प्रभु केरा, क्या को पूछड़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे। भाग मस्तक होए जिसकै तिस गुर नाल सनेहा, जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजेहा। दह दिस खोज तहम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायाड़ा कर आए राम, हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिसमै रिया समाए राम। सर्वे समाणा आप स्वामी, गुरमुख प्रगट होया, मिटिया देरा दुख नाठा, आम्यो हरा चोया। जहां देखा तहां स्वामी, पार ब्रह्म सब ठाए, जन कह नानक सतगुर मिलाया हर पायाड़ा कर आए। राग बिहागड़ा महला पंजवा, अत प्रीतम मन मोहना, कट सोहना प्राण आधारा राम, सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की, अपरिया पारा राम। गोपाल दयाल गोविंद लालन, मिलो कंत ने माणिया, नैन तरसन दर्श परसन, नैन नींद रहन विहानिया। ज्ञान अंजन नाम बिंजन, पै सगल सिंगारा, नानक पयम पै संत जंपै, मेल कंत हमारा। लाख उलाहने मोहे हर जब लगन है मिले राम, मिलन को करो अपाव किश हमारा न चले राम। चल चित बेत्या नित प्रे बिनो, कवन विधि ना तीजी है, खान पान सिंगार बिरथे हर कंत बिन क्यों जीजी है। आसा प्यासी रहन दिन यार, रह ना सकिया एक तलै, नानक पयम पै संत दासी, तो प्रसाद मेरा पिर मिलै। सेज एक प्रयो संग दर्शना पाईए राम, अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम। निर्गुण निमाणी अनाथ बिनवै, मिलहो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइए सहज सोइए, प्रपलक पेखत नमन दे। गृह लाल आवै महल पावै, मिल संग मंगल गाइए, नानक पयम पै संत सरणी, मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम, इश्पुनी मन सांत तप्त बुझाया राम। सफला सो दिन सरहणे सुहावी, अंत मंगल रसकना, प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन, कवन रसना गुणपणा। प्रम लोभ मोह बेकार थाके, मिल सखी मंगल गाया, नानक पयम पै संत जंपै, जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे, अंधन नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उचरा हर जस, मिठा लगे तेरा पाणा राम। कर दया मया गोपाल गोबिंद, कोय नाही तुझ बिना, समराथिया गाथिया पार पूर्ण, जियो तन तन तुम मना।
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ ਬਲਹੀਨ ਨੀਚੈ ਜਾਣਾ ਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਲੈ ਉਹ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਾਧੈ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ਧੂਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮੰਤਨ ਲੱਗੋ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਪਦ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ ਪਥਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਹੇ ਤਿਨ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਿਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀ ਦਾਤੇ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਅਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਹਰ ਜਪ ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਤਾ ਜਿਨੀ ਸਚ ਵਣੰਜਿਆ ਹਰ ਜੀਓ

का एक जन एक मन राम कै रंग मातिया लग संत चरणी पड़े सरणी मंत ना ओ महा बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै सही सचे सहा।

दुख रोग ना पहु ब्यापै जिन्नी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एको अंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रै निड़िए प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार किरपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाईए प्रभ ते आईए जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड़ पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगे बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावै प्रभ ते आवै तन ते वट पागिया सुख सहज सोवै किल बिख खोवै नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे पाने बिनवंत नानक मने छपाई हर मिले पुरख चराने तित ग्रह सोहलड़े कोड नंदा मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद पत उदारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पै सिंध सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवां हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कहो कट्टै जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार किरपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावै संत जना प्रभ का जयकारो राम मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमाणी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृथिया फिर नामुआ कल कले साधुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिसते उपज्याड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया बन त्रिण त्रिपवन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरै प्रभ प्राणिया धारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाई लीजिए देह नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पेखे जीजिए
समर्थ पूर्ण सदा निहचल ऊच अगमे अपारे बिनवंत नानक तार कृपा मिलाओ प्राण प्यारे। जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है अनाथ निर्गुण कछ ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना नानक चात्रक हर बूंद मांगै जप जीवा हर हर चरना अमै सरोवर पियो अमै सरोवरो पियो हर हर नाम राम संतै संग मिलै जप पूर्ण काम राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण हर निमुख मनो ना बिसरै आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसरै अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचक मिया पारे बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से दे आवे। तार वार विशुने ने पाप जुड़ते जम गौने अकेली बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया पर मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे अकिरत कान विच

जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है, सहजे होए सो होए।

का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानण तां थीऐ जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिनकी आतन साज, नानक सरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदो क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करै सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसया तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदर रह सदा गुण गाए, विण कर मैं किने ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भिजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जै। आप निर्विरत आप निर्विरति, आपे कथ कथी जै, आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड तू, पाओ कर चल गवाए, गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए, मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी, सा खसम पाए थाए, नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड कमावै कूड संग्रह, कूड करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर पंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिया, हमै ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सदगुरु है, कलयुग बोइथ होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सदगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है।

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जै, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार, नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी। आपे चार साल

पहला काया लाहने आप मद मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल इत मद पीते नानका बहुते खटिए बिकार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक हो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत तिसकी तार सतसंग स्यो मेलाप होए लिव कटोरी अमृत परी पीपी कटे बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे शिव शंकरा महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फ्रै बिबाणी आपे नाल गोष्ट आप उपदेश आपे सुर स्वरूप सियाणी आपना चोज कर वेख आपे आपे सबना जिया कह जानी श्लोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रभ मेरा चित आवै हर स्यों प्रीत उपजै माया मोह जलावै गुरप्रसादी दुबदा मरै मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास पाया आपे दास अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भरम गया श्लोक महला पंजवा हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़े खेहे जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देहे महला पंजवा घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिय तिस देही कौपाल पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वर्तै स्वामी आप जपाए नाम आप दयाल हुए पौखंडनो आप करै सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगै पाए मान जिस दी पैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यों चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनिस जलत बिहाए जो तिस भावै सो थीऐ कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारा होए कै सब समाले हो साहिब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू यो लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक अथ है सुख है अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रया सुमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए श्लोक महला तीजा मानस परिया आणिया मानस परिया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवै विच आए
ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਖਸਮ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚਈ ਜੇ ਕਾ ਪਰ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਭ ਸੱਚ ਮਦ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਹਿ ਮਹਿਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਗਤ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਿਨ ਸਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਰਹਿਆ ਜਗਾਏ ਤਾਂ ਸਿਧ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੋ ਖਾਵੈ ਸਭ ਮੋਹਤਾਜੀ ਕੱਢੈ ਤੇਰੀ ਜੇ ਤੁਧਨੋ ਸਾ ਲਾਹੇ ਸੋ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਰੰਜਨ ਕੇਰੀ ਸੋਈ ਸਾਹੋ ਸੱਚਾ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਨ ਵੱਖਰ ਲੱਦਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤਿਸੈ ਨੋ ਸਾ ਲਾਹਿਓ ਸੰਤੋ ਜਿਨ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਕੀ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੀ ਢੇਰੀ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰਾ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ ਮਰ ਪੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ

ब्रह्म है वेद वाणी प्रगासी माया मोह पसारा महादेव ज्ञानी वर्तै कार्य अपने तामस बहुत अहंकारा किसन सदा अवतारी रूदा कित लग तरह संसारा गुरमुख ज्ञान रते जुगे अंतर चूकै मोह गुबारा सतगुर सेवा ते निस्तारा गुरमुख तरह संसारा साचा नर ते बैरागी पाए मुख द्वारा एको सच वरतै सब अंतर सबना करे प्रतपाला नानक इक्स बिन मैं अवर ना जाना सबना दीवान दयाला अवढांस महला तीजा गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान गुरमुख साचा लगे ध्यान गुरमुख मन मेरे नाम संभाल सदा निभै चलै तेरे नाल रहाओ गुरमुख जात पात सच सोए गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए गुरमुख जिसनों आप करे सो होए गुरमुख आप वडाई देवै सोए गुरमुख शब्द सच करनी सार गुरमुख नानक परवार साधार वढ़ंस महला तीजा रसना हर साध लगी सहि सुभाए मन तृप्तिया हर नाम ते आए सदा सुख साचै शब्द विचारी अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी रहाओ अखी संतोखियां एक लिव लाए मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाए नाम परमल हृदय रया समाए नानक मस्तक जिस वड भाग गुर की बाणी सहज बैराग वढ़ंस महला तीजा पूरे गुरते नाम पाया जाए सच्चा शब्द सच समाए ए मन नाम निदान तू पाए अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ गुर कै शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसै मन आए परमे पूला फिरै संसार मर जन्मै जम करे खुवार नानक सेवट भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी मन

तू गुर का शब्द कमाए। हुक्म मने ता हर मिले ता विचों हम मैं जाए रहाओ। हम मैं सब शरीर है, हम मैं उपत होए, हम मैं वड्डा गुबार है। हम मैं विच बुझ न सके कोए, हम मैं विच भगत ना होवई। हुक्म ना बुझिया जाए, हम मैं विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिलिया हम मैं गई, ता सच वसिया मन आए। सच कमावै सच रहै, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेज एक एको प्रभ ठाकर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा मिलावै मेरा प्रीतम। हम वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण

नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी, हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयाणी। जो पिर पावे सा सुहागण, साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण। नित सुहागण सदा।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मै रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाईऐ। गुर कृपा ते प्रभु त्याईऐ रहाओ। हर रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपै निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै ता लागै हवा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर ना होर, बिनों करै नानक कर जोर। बड़हंस महला पंजवा, तू जाना है ता कोई जाने, तेरा दिया नाम खाने। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी। वडहंस

सच कमाई है, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है, लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है, जिथे जाए बहिया भला कही है, सुरत शब्द लिखाई है, काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है, ता मैं कहया कहण जत जय कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा दुख डेरा टाहया, सुख मन में आए वसया जामते फरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया, ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना, जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब्यो।

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बुझावै दुख भूख संसार किए, सासा हो चुकावै। बिनवंत नानक जाय सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया।

हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे। हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाण पो लया ना जाई कर था के सब चितराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिने अवर न कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया। गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञाना देर बिनासे। सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे जिन कौ हर प्रभ कृपा तारी ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई राम। हर नाम देवे मेरा अंत सिखाई राम हर हर नाम मेरा अंत सिखाई। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छडाया। धन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर

जिनी दर्शन जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम, तेने फल तेने फल जन्म सब बिरथा गवाया राम। ने फल जन्म तेन बिरथा गवाया, ते सागत मोए मर चूरे, कर होंद रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका दर्शना करी आओ, जिनी हर हर नाम ना त्याया, जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया। हम चात्रक दीन हर पास बेनंती राम, गुरमेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करै भक्ति राम। हर हर सतगुर करै भक्ति, जा हर प्रभु कृपा तारे, मैं गुरबिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रक दीन हर पास बेनंती। वड़हंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम। हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम, सतगुर पास हर बास पूछे, जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती, गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता, हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम, सबिन से हो मैं पापा राम, जप हर नाम, लथे अड़े जगता पा राम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभु कृपा तारी, सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरे मन पाया राम, मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पय शरीरा, आंदन सह समाध हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया, जप हर नाम, मेरे मन पाया।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे हे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करतै हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुविन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुमामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक बखाणे नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडपागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस महला पंजवा शंत कर चौथा।

गुण अवगुण मेरा किश ना विचारिया, बख्शली आखिन माही। नौनिद पाई वजी वधाई, वाजे अनहद तूरे, कहो नानक मैं वार कर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। सलोक क्या सुने दे कूड़, वंजन पवन चुलारिया, नानक सुनी अरते प्रवान, जो सुने दे सच तनी संत। तिन कोल कुमाई जिन प्रभ सरवनी सुनिया, राम से सहे सुहेले जिन हर हर रसना भणिया। राम से सहे सुहेले गुणे अमोले, जगत उदारने आए, पै बोहिथ सागर प्रभ चरणा, केते पार लंगाए। जिन कहो कृपा करी मेरे ठाकरो, तिनका लेखा ना गणिया, कहो नानक तिस कोल कुमाई जिन प्रभ सरवनी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ, प्यास ना बुझै मूकणी, नानक से अखड़ियां बयान, जिनी डसन दो मां पिरी संत। जिनी हर प्रभ डिठा तिन कुरबाने, राम से साची दरगै पाने। राम ठाकुर माने से प्रधाने, हर से ती रंग राते, हर रस अगाए सही समाए, कट कट रमैया जाते। सही सज्जन संत से सुखिए, ठाकुर अपने पाने, कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सतगुरु बाणे। सलोक देह अंधारी अंध सुनी ना विहुनिया, नानक सफल जनम जय कट उठा सच तनी संत। तिन खनी है वन्या जिन मेरा हर प्रभ डिठा, राम जन चाखिया गाने हर हर अमृत मीठा। राम हर मने मीठा प्रभु तूठा, अम्यो उठा सुख पए, दुख नाश परम विनाश तंते, जप जगदीश ईसै जय जय। मोह रहत बेकार थाके, पंच ते संग तूटा, कहो नानक तन खनिया वन्या, जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। सलोक जो लोड़ी दे राम, सेवक से ही कंडिया, नानक जाने सत साई संत ना बाहरा। संत मिल जल जलै खटाना, राम संग ज्योति ज्योत मिलाना। राम समाए पूर्ण पुरख करते, आपे आपे जानी है, तह सुन सह समाध लागी, एक एक वखाणी है। आप भुगता आप मुगता, आप आप वखाना, नानक भ्रम पै गुण बिनासे, मिल जल जलै खटाना। वडहंस महला पंजवा, प्रभ करण कारण समरथा। राम रख जगत सगल दे हथा, राम समरथ सरना जोग स्वामी, कृपा निध सुखदाता, हां कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता। वर्ण चिहन ना जाए लखिया, कथन ते अकथा, बिनवंत नानक सुनो बिनती, प्रभ करण कारण समरथा। एह जी तेरे तू करता, राम प्रभ दुख दर्द भ्रम हरता। राम भ्रम दुख दर्द निवार, खिन मैं रख ले हो दीन दयाला, मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो सरने आवै गुण निधान पावै, सो बहुत जन्म ना मरता, बिनवंत नानक दास तेरा, सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर त्याई है राम, मन इच्छ अड़ा फल पाई है। राम मन इच्छ पाई है प्रभ त्याई है, मिटै जम के त्रासा, गोविंद गाया सा संगाया, पई पूर्ण आसा। तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाई है, बिनवंत नानक दिन सरैणी, सदा हर हर ध्याई है। दर वाजे अनहद वाजे राम, घट घट हर गोविंद गाजे। राम गोविंद गाजे सदा बिराजे, अगमा गोचरी उच्चा, गुण बेअंत किश कहण न जाई, कोई ना सकै पहुचा। आप उपाए आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे, बिनवंत नानक सुख नाम भगती, दर वजे अनहद वाजे। राग वडहंस महला पहला, घर पंजवा अलाहणिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद। तन सरंदा सच्चा पातशाह,
ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀ ਆੜਾ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਨੀ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰੁਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂਦਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ ਐਥੇ ਤੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਾ ਕਾਹੇ ਗਰਭ ਕੀਜੈ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਤਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ਆਗੈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਮੂਲੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਆ ਵਿਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਾਚੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਅਲਖਿਆ ਪਾਰੋ ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਟਾਹੇ ਟਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੋ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਾਲੇ ਵੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰੋ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰੋ ਗਾਫਲ ਸੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਰੋਵੈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੇ ਸੂਜੈ ਨਾਹੀ ਉਹ ਤਨ ਏ ਵੈ ਖੋਵੈ ਐਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂੜ ਕਰੋ ਅਹੰਕਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵਾਓ।

मरण मुन सासुरिया हक है, जो होए मरण परवानो, सूरे से ही आग्ञा आखिए, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आग्ञा दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु पागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेखे साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेखे आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिसो चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू, सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिरजनी मेदनी, तुद सिरजी मेदनी, दुख सुख देवन हारो, नारी पुरख सिरजिया, बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया, देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया, सच निवेण नहारो, आवागमन सिरजिया, तू थिर करण हारो, जमन मरना आए गया, बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया, बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदया, अवगुण का वणजारो, सदड़े आए तना जानिया, हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया, विछड़िया मेलनहारो, रूप ना जाने सोहनिया, हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी, तोड़ नहेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै, हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मर माइये, महल रुनी दरबारे, रवो कंत में लियो, सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया, कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया, पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरै सो जानिए, फिर सचड़ै हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठ मुठी संसारे, हौ मुठड़ी तंदै तावनिया, फिर छोड़ियाड़ी विदनकारे, कर कर कंत महेलिया, रूड़ै हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना, हौ रहसियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया, सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो, सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी, सच सवारन हारो, गावो गीतना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पालिए, कटकट शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो दूर ना जानो, जिन एह रचना राची, नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो, सो साहे परवानो, बाबा आया है उठ चलना, अद पंदा है संसारो वा, सिर सिर सचड़ै लिखिया, दुख सुख पर्व विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया, सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांदी, कर हुक्म छडावन हारो, अजकल करदिया काल ब्यापै, दूजे पाए

जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेफत लाइया ना भोजन प्रकारो वा, भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सिंगारो, गल संगल सिर मारे उबो ना दिसै कर बारो, इबके राहे जमन नाही पछताने सिर पारो, बिन साचे को बे

कामणे आरी कामण पाए बहुरंगी गलता गा। होछी मत भया मन होचा गुड़सा मक्खी खाया। ना मरजाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया। बाबा रोवो जे किसै रोवना जानी आला बंद पठाया है। लिखियाड़ा लेखना मेटी है दर हाकार आया है। हाकारा आया जात पाया रुन्ने रोवन हारे। पुत पाई पाती जे रोवे प्रीतम अत प्यारे। पैरो वै गुणसार समाले को मरे न मोया नाले। नानक जुग जुग जान से जाना रोवे सच समाले। वडहंस महला तीजा। महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ सचड़ा हर साला ही है कार्ज सब किश करने योग। सा तन रंड ना कभू बैसई ना कदे होवै सोग। ना कदे होवै सोग अंदन रस भोग सा तन महल समाणी। जिन प्रयो जाता कर्म विदाता बोले अमृत बाणी। गुणवंतियां गुणसार है अपने कंत संभालै ना कदे लगै विजोगो। सचड़ा पिरसा लाही है सब किश करना है जोगो। सचड़ा साहेब शब्द पछाणी है आपे ले मिलाए। सा तन प्रे कै रंगरती विचों वाप गवाए। विचों वाप गवाए फिर काल ना खाए गुरमुख एको जाता। कामणेश पुन्नी अंतर भिन्नी मिलिया जग जीवन दाता। शब्द रंग राती जोबन माती फिर कै अंक समाए। सचड़ा साहेब शब्द पछाणी है आपे ले मिलाए। जिनी अपना कंत पछाणिया हां तिन पूछो संतां जाए। आप छोड़ सेवा करी पर सचड़ा मिले सही सवाए। पर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती। कदे नारांड सदा सुहागण अंतर सही समाधि। पर रहया पर पूरे वेखा दूरे रंग माने सही सवाए। जिनी अपना कंत पछाणिया हां तिन पूछो संतां जाए। पिरो विशुनिया पी मिल है जे सतगुर लागे साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा भाव गवाए। सच्चे ही सच राती सच्चे शब्द सदा सुख पाया। हों मैं गई पराती पिर निरमायल सदा सुखदाता। नानक शब्द मिलाए पिरो विशुनिया पी मिल है जे सतगुर लागे साचे पाए। वडहंस महला

रोवै कंत समाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ियारे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप पायो नो।

ज्ञान में होनी मुठी बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो रोवै उगणियारी झूठी पिर जग जीवन किसनो रोई है रोवै कंत विसारे सब जग आपो पायो न आमन जान संसारे सो पिर सच्चा सद ही साचा है ना यो मरे ना जाए भूली फिरै तन एणिया रंड बैठी दूजे पाए रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए आव कटै तन शीजै जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजै जमकाल ना सूजै माया जग लूजै लब लोभ चित लाए सो पर साचा सद ही साचा ना एहो मरै ना जाए एक रोवै पिरै विशुनिया अंधी ना जाने पिर नाले गुरप्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा समाले पिर अंतर समाले सदा है नाले मनमुख जाता दूरे एहो तन रुलै रुलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सातन मिले मिलाई पिर अंतर सदा समाले एक रोवै पिरै विशुनिया अंधी ना जाने पिर है नाले वढांस महला तीजा रोवै पिरै विशुनिया मैं पिर सचड़ा है सदा नाले जिन्नी चलन सही जानिया सतगुर सेवै नाम समाले सदा नाम समाले सतगुर है नाले सतगुर सेव सुख पाया सबदे काल मार साची वरतार फिर आवन जान ना होया सच्चा साहेब सच्ची नाई वेखै नजर निहाले रोवै पिरो विशुनिया मैं पिर सचड़ा है सदा नाले प्रभ मेरा साहब शब्द ऊंचा है के मिला प्रीतम प्यारे सतगुर मिली ता सहज मिली पिर राखिया उरतारे सदा उरतारे नेहो नाल प्यारे सतगुर ते पिर दिसै माया मोह का कच्चा चोला तिद पैदै पग खिसै पिर रंग नहीं पिर रंग राता सो सच्चा चोला तित पैदै तिखा निवारे पर मेरा साहेब शब्द ऊंचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर पुली अवगणियारे मैं सदा रावे पिरे अपना सचड़ै शब्द

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत उपाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

ज्ञान रतन काट चानन होवा नानक नाम प्यारो सचड़ा आप जगत उपाया गुरबिन कोर अंधारो। वड़हंस महला तीजा एहो शरीर जजरी है इसनों जर पहुंचा आए गुर राखे से उबरे होर मर जमै आवै जाए होर मर जमै आवै जावै अंत गए पछतावै बिन नामै सुख ना होई ऐथै कमावै सो फल पावै मनमुख है पत खोई। जमपुर कोर अंधार महागुबार नाथ थै पैण ना पाई एहो शरीर जजरी है इसनों जर पहुंचै आई। काया कंचन ता थी जा सतगुर ले मिलाए भ्रम माया विचों कटी है सचड़ै।

ठाकुर हम बार्क शरण तुम्हारी, एको सच्चा सच तू केवल आ मुरारी रहाओ। जागत रहे इतनी प्रपाया सबदे हों मैं मारी, गृह मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत् बिचारी। सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राख्या उर धारी, एहो मनुआ दे जस्ताम दा दूजे पाए खुआया। मनमुख मुगद हर नाम ना चेतै बिरथा जन्म गवाया, सतगुर भेटे ता ना हो पाए हों मैं मोह चुकाया। हर जन साचे साच कमावै गुर कै शब्द विचारी, आपे मिल ले प्रव साचे साच रखिया उर धारी। नानक नाम गत मत पाई एहा रास हमारी, सोरठ महला तीजा भगत खजाना भगतन कौ दिया। नाओ हर तन सच सोए अखुट नाम कदे निखुटै नाही, अखुट नाम तन कदे निखुटै नाही, किने ना कीमत होए। नाम तन मुख उजले होए हर पाया सच सोए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए। बिन शब्द जग पुलदा फिरदा दरगह मिलै इस जाए रहाओ। इस ते ही अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लो मोहंकारा, अमृत लूटै मनमुख नहीं बूझै कोई ना सुने पुकारा। अंधा जगत अंध वरतारा वाजगुरु गोबारा, हाँ मैं मेरा कर कर विगुते केहो चले ना चल दिया नाल। गुरमुख होवै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल, सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल। सतगुर ज्ञान सदा घट चरण अमर सिर बाद साहा, अन दिन भगत करै दिन राती राम नाम सच लाहा। नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पाहा। सोरठ महला तीजा

मन हर जब मीठा लागे भाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजै भाई, मनमुख दूजै पाए तोह कुटै। मनमुख कर्म करै भाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या भाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै भाई, गुर कै हित अपार। आया सो प्रमाण है भाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई भाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई। पूछो ज्ञानिया जाए, मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जियो तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै भाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे भाई, पवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है भाई, हृदय रखिया उतार। गुर सरनाई उबरे भाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मरजन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हर साधना आया। संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवड भागी, जिसनो वाह मिलाए। हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों आप गवाए। एहो जग अंदा सब अंध कमावै, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोरठ महला तीजा, बिन सतगुर से

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा क्रिविख कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दातै दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजै। गातमा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा शब्दे हम मैं खोई। सोरठ महल

आपे वणजवा पारिया प्यारा, आपे सचवे साहो, जप मन हर हर नाम सलाहा, गुर कृपा ते पाईए प्यारा, अमृत अगम्या थाहा रहाओ। आपे सुन सब वेखदा प्यारा, मुख बोले आप मुहाओ, आपे उजड़ पाएंदा प्यारा, आप विखाले राहो। आपे ही सब आप है प्यारा, आपे वे प्रवाहो, आपे आपो पाएंदा प्यारा, सिर आपे तंदड़ाए लाहो। आप कराए साखती प्यारा, आप मारे मर जाहो, आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंगाहो। आपे सागर बोए था प्यारा, गुर खेवटे आप चलाहो, आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाहो। आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मिला हो, सोरठ महला चौथा चौथा। आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणिया, कर सकती जगत परोए। आपे ही सूत धार है प्यारा, सूत खिंचे टह टेरी होए, मेरे मन मैं हर बने वरना कोए, सतगुर विच नाम निदान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाओ। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सबना रिजक समाह।

बन बकरी सी हो हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया, आपे ही आप वरतदा प्यारा, पै अग्न ना सकै जलाया, आपे मर जीवाइंदा प्यारा, सह लैंदे सब लवाया, आपे तान दीवान है प्यारा, आपे घर लाया, जो आप चलाए त्यों चली है प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया, आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह वजाया, सोरठ महला चौथा, आपे सृष्टियों पाइंदा प्यारा, कर सूरज चंद चाणान, आपने ताणिया तान है प्यारा, आपने माणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सूड सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत संगत

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हम मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल।

कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई एह मन तेरा भाई रहाओ पाव मिलोवा मल मल तोवा एह मन तैकू देसा सुन मीता हो तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना की जय शरण परी जय करै सो पला मनाई सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय इउं दर्शन हर जियो पाई है भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर किरपा धारी सबा कुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाले नित सार संभाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा पर पूरी रे पेखत सुन तो सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हो मित कर वरनाओ क्या जाना हो कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परा दी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना भरिया रे सोरठ महला पंजवां जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो ते मिटे सब गया सह सैन यार सुख मन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज पाया जे ठाकर कहो सुनते अगाद बोध सोरदय गुरदया रहाओ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करै बेनती राग ठाकर ते हम तेरी सरनाया जह भंडार गोबिंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरदीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम वा भगत भंडार गुरु नानक कौ सौपे फिर लेखा मूल नान लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जा का मन लीना से जन तृप्त अगाई गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया ते नर तृष्ण त्रखाई हरिया राधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जिह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जिह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरने जिह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जिह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय पय मगन चरनारा सोरठ महल

हर जन को ही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख हो तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर देसा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राग संतन कै पाचे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर अथा

कीते कहो मेरे सम्मान है करणहार तरण जाने तू दाता मांगन कहो सगली दान दे प्रभ पान है खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी उड़सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एह मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कह प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवा जे

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पानै अंतरबिद जानै ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकी कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो का टायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाएं

आवो अपनी विद आप जनावो हरजन मंगल गावो रहाओ बिसर नाही कबहू ही ते एह बिद मन मैं पावो गुरपुरा भेट्यो वडभागी जन नानक कतै ना तावो सोरठ महला पंजवा जा कै सिमरण सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो जो समय रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिल नाम ते आवो पूर्ण हो वै काला रहाओ सार संभालै नित प्रतपालै प्रेम सहित गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सोरठ महला पंजवा अबनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बाहुड दुख ना होई रहाओ वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की तूर नानक दास बंछै जिन हर नाम हृदय परोई सोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम विचारै

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवां संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अबनासी।

सुख मंगल कल्याण सहज तुहन प्रभ के चरण निहारिया। राखन हार राख्यो बारक सदगुर तापो तारिया। उबरे सदगुर की शरण आई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाओ। घर में सुख बाहर फुन सुखा प्रभ अपने पहे दयाला। नानक बिघन ना लागे को मेरा प्रभ होवा कृपाला। सोरठ महला पंजवा साधु संग भया मन उद्दम। नाम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमरिया नंता सागर तरिया पाई। हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज तन उपजी रोगा कान मिटाई रहाओ। क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन न जाई। नानक भगत पय अविनाशी अपना प्रपया सहाई। सोरठ महला पंजवा गए कलेस रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा तारी। आठ पहर आरा दो स्वामी पूर्ण काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास राख लहो भाई मेरे कहो प्रभ आगे अरदास रहाओ। जो मांगो सोई सोई पावाओ अपने खसम भरोसा। कहो नानक गुरपुरा भेटियो मिट्यो सगल्यां देसा। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरपुरा सुखदाता करण कारण समर्थ स्वामी पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला। जय जयकार भय जग पीतर होवा पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंग माण। साचा साहेब साध मेहरवान बंद पाया मेरे सदगुर पूरे हुई सर्ब कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखी नानक सत कुरबान। सोरठ महला पंजवा दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया। पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी अपना बिरद समारिया। होई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावो मन तन दे सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरण सतगुर मेरा मोहे तिसका परवासा। बख्श लय सब सच्चे साहेब सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेसर सगले रोग बेदारे। गुरपुरे की सरनी उबरे कार्ज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार तापो तारिया सतगुर पूरे अपनी कृपा तार रहाओ। सदा आनंद करह मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया। वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सतपाखिया। सोरठ महला पंजवा पय कृपाल स्वामी मेरे तित साचा दरबार। सतगुर ताप गवाया पाई ठांड पई संसार। अपने जी जंत आपे राखे जमै की ओ हटतार। हर के चरण हृदय उतार सदा सदा प्रभ सिमरिए भाई दुख किलबिख काटन हार रहाओ। तिसकी सरनी उबरे भाई जन रचिया सब कोए। करण कारण समर्थ सो भाई सच्चे सच्ची सोए। नानक प्रभु त्याई है भाई मन तन शीतल होए। सोरठ महा

सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रपय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला होवा धार कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा नरोवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जनकी लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेव की आपे राखै पूर्ण पई बड़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरै पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ आनंदन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास का कंठ लाए राखै जो बारक पित माता सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारो ने पति आया उमरावो आ गै चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभद अपनी पाई ता कत आवै कत जाई तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तै अनहद सब दिया गाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर इशनाना रहाओ साची गुर वडियाई ता की कीमत कहन न जाई सिर साहा पातशाह गुर भेट तमन ओ महा सगल प्राहित लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करै जयकारा नानक प्रभ मेरा साथे जन्म मरण पैलाथे सोरठ महला पंजवा गुर पूरै कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इसनान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरीय उठत बैठत हर हर त्याय अन दिन सुकृत करिए रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडपागी पाए कोट जन्म के किल बिखना से हर चरणी तलाए उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जन पूरी कल राखी जी जंत सा पय पवित्रा सदगुर की सच साखी बिघन बिनासन सब दुख नासन सदगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पय सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पय दयाला
ਜਪ ਅਨਦਰ

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी, सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया, हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई, हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा, ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी, परमेसर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखिन मैं उपजे, मन हो

कहो नानक हो मैं पीत गुर खोई, तो दयार बीठ लो पायो। सब रहो अंदेसरो मायो, जो चाहत सो गुरु मिलायो। सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा, सोरठ महला पंजवा, गई बहोड़ बंदी छोड़। निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना, धर्म ना जाना, लोभी माया तारी। नाम परयो भगत गोविंद का, एह राखो पैज।

जैसा बाल को पाए सुभाई लख अपराध कुमावे कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब जाने ता किस पै आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहण न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे का सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक सच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाके, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरणों

भावै आठ पहरो हर का जस रमणा बखैठ गौरी लाथी संग मिलाए लिया मेरा करतै संत साध पए साथी। कर कहली ने सरबस दीने आपै आप मिलाया कहो नानक सर्व थोक पूर्ण पूरा सतगुर पाया। सोरठ महला पंजवां गरीबी गदा हमारी खन्ना सगले नशारी इस आगै को ना टिकै बेकारी गुरपूरे एह गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा जो सिमरै तिसकी गत होवै उधरै सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया एह पूर्ण हर तन पाया कहो नानक आप मिटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोरठ महला पंजवां गुरपूरै पूरी कीनी बख्श अपनी कर दीनी नित्यानंद सुख पाया थाव सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती गुरपूरै कृपा कर दीनी विरलै किन्हीं जाती रहाओ। गुरबाणी गावो पाई गुरबाणी गावै पाई ओ सफल सदा सुखदाई नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवां गुरपूरा आरा दे कारज सगले सादे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे संतो राम जपत सुख पाया। संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाओ। गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास बखाणी निर्मला कथ कहानी। सोरठ महला पंजवां भूखे खावत ला भूखे खावत लाज ना आवै त्यों हर जन हर गुण गावै। अपने काज को क्यों अलकाई है जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल सदा सदा सुख पाई है रहाओ। ज्यो कामी काम लुभावै त्यों हर दास हर जस पावै। ज्यो माता बाल लपटावै त्यों ज्ञानी नाम कमावै। गुरपूरे ते पावै जन नानक नाम ते आवै। सोरठ महला पंजवां सुख सांद घर आया निंद कै मुखशाया पूरे गुर पहराया बिनसे दुख सवाया। संतो साचे की वड़ियाई जिन अचरज सो बनाई रहाओ। बोले साहेब कै पाण दास बाणी ब्रह्म वखाण। नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई। सोरठ महला पंजवां प्रभ अपना हृदय ते आए कर सही सलामत आए। संतोख भया संसारे गुरपूरै लै तारे। संताओ प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणई राखै बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय और तारे तन सबे थोक सवारे गुरपूरै तुस दिया फिर नानक दुख ना थिया। सोरठ महला पंजवां हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की वड़ियाई ता की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम जिसनो बख्श लह मेरे प्यारे सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरण आई मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवां आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेसर बणत बनाई फिर डोलत कतहू नाही। साचे साहेब स्यो मन मान्या हर सर्ब निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड़ियाई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवां
ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ। ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਰਹਾਓ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚਾਖੈ।

सुनी पुकार समर्थ स्वामी बंधन काट सवारे तहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहूं बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यों परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम पज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही

दारामीत पूतरथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा। मन रे कौन कुमत लीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ। मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा। मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण कासी उदरी ताको जस और तारो रहाओ। अटल भयो त्रू जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा। अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरै पारा।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सोनो निमख ना ही बसावै। पर धन पर दारा स्यो रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागयो दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यो लागे। जब ही निरतन देखियो नरको संग छाड़ सब भागे।

मोहो अपमाना हरख सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निरासा काम क्रोध जे परस नाहनो ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जे नर कौ कीनी तेह ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी सोरठ महला नावा प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरै विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत नेरै कर की नार बहुत हित जा स्यों सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत कर पागी एह बिद को ब्योहार बनयो है जांस्यो नेहो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो बड़े मसान ना जाई तृष्णा राजना पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पाई

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिओ बैरागी है पाई दर कर साचा पूल पाता लिया कास तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़े तेहे गुर बिन अलख ना लखिए पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई जय पावे तें दे बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो हरनाक समार पजाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी एह तेरी वड्याई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ भगता नु जम जोहे ना साकै काल ना नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई अरे दसेदो सब

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिलिया हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिलै प्यारे दरगै मिलै सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पा प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कून न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंग मसादे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्मया फारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर करमन कै करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लब्बई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा, हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा, सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म प्रवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान, कुल उधारे अपना सोजन होवे प्रमाण, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हां गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है। श्लोक महला तीजा, पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोका विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखा नो सुख अगला जनांतर नाम निवास। महला तीजा, से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार, मनमुख आप सवारथी कारज ना सके सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार। पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया, विच हमै लेखा मंगिए फिर आवै जाया, जिन्ना हरे आप कृपा करे से गुर समझाया, बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चितलाया बिना मैं जग कमला फिरै, गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिन्ना कौ मिलिया जिन कौ तुर लिख पाया। महला तीजा, कर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने परम दा परम पुलाया, अमृत ताज बिख संग्रह करता आप खोवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया रसना हर साध आया, सबदे ही ना उपजै सबदे मेल मिलाया, बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख्या गम है, कहो
कित बिद पाईऐ तिस रूप ना रेख्या दृष्ट कहो जन क्यों त्याईऐ। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाईऐ जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाईऐ। गुर पूरे वे खा लिया गुर सेवा पाई है श्लोक महला तीजा। ज्यो तन कोलू पीड़ी है रतना पूरी डेह जियो वन्ये चौखनी है सच्चे संदड़े ने नानक मेल न चुकई राती अतै डेह महला तीजा। सज्जन मेंडा रंगला रंग लाए मन ले ज्यो मां जीठे कपड़े रंगे पी पाहे हे। नानक रंग ना उतरै ब्याह न लगे के हे पौड़ी हर आप वरतै आप हर आप बुलाएंदा। हर आपे सृष्ट सवार सिर तंदै लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खवाएंदा एक ना मार्ग पाए कुजड़ पाएंदा। जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएंदा श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवै अपना हम तन बलिहार जाओ। महला तीजा मनमुख मान्या जित है दूजे लगै जाए। तिसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मन वस ना आवई थके कर्म कुमाए। पेख तारी पेख कर थके अड़सठ तीर्थ नाए। मन की सार ना जाननी हम मैं परम पुलाए। गुर प्रसादी पौ पया वड़ भाग वस्या मन आए। पै पया मन वस होवा हम मैं शब्द जलाए। सचरते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सदगुर मिले ना हो पाया नानक सुख समाए। पौड़ी एह भूप तराने रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग सुंभ खिन मैं लै जावना। चलदिया नाल ना चल सिर पाप लै जावना जा पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना। ओ वेला हथ न आवै फिर पछतावना श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे फिर मिलना पाए नी जमै तै मर जाहे। सहसा रोग ना छोड़ई दुखी मैं दुख पाहे। नानक नदरी बख्श लेहे सब दे मेल मिलाहे महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरै दुह चारण बद नाओ। नानक गुरमुख बख्शीऐ से सतगुर मेल मिलाओ। पौड़ी जो सेवै सत मुरार से भवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड गया। से दरगै पहदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर से वैसे ही पुरख जिन्ना हर तुद मया। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पौ गया श्लोक महला तीजा। थाले विच तैं वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खादे मन तृप्ती है पाईऐ मुख द्वार। एहो भोजन अलभ है संतो लब्बै गुरविचार एह मुदामणी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखिए और तार। एह मुदामणी सतगुरु पाई गुरसिखा लद्दी पाल नानक जिस बजाए सो बुझ सी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा जो तोर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खुआए। नानक विण कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाए। पौड़ी बै सखिया जस गावै गावन हारिया
ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਓ ਨਿਤ ਹਰ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨਾ ਹੋ ਵਾਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆਂ ਬਲ ਜਾਓ ਪੌੜੀ ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜੋ ਹਰ ਰਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਉਤਪਤਿਆ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਤਿਨ ਡਰ ਸਟ ਕਤਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਤ ਕੇ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਵਿੰਡਿਠਾ ਕਿਆਸਾ ਲਾਹੀਐ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈ ਅਨ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ ਕੂੜ ਆਰੀ ਰੱਜੈ ਕੂੜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵਈ ਜਿਸਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਈ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਦ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾਂ ਚੌ ਚੱਕਿਆਂ ਚੌ ਵਾਇਆ ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਉ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਪੀ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਗ ਪਹਿਨਣ ਤਿਗ ਖਾਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟਣ ਆਵਈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਮੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰ ਹਰ ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਅਧਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਂਤ ਕਰ ਕੋਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਬਿਵੇਕ ਕਰ ਸੋ ਬੂਜੈ ਹੋ ਬਿਵੇਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਪਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਅੰਤ ਦੁਖ ਪਉਤਾ ਆਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੰਡਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹਰ ਸਿਉਂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਪੰਡਤ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਤਨ ਭੱਲੈ ਪਾਏ ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ ਅੰਦਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੋਣਿਆ ਮੋਹੇ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਜੋ ਹਰ ਦੱਸੇ ਮਿੱਤ ਤਿਸ ਹਉਂ ਬਲ ਜਾਈ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸਿਉਂ ਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਡਿਤ ਮਹਿਲ ਨਾ

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सत्या शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाए प्यार, नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए, अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगे खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मंत्र मुख हर बोले साहर पावनी। जो गुरमुख चखे

ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत्र है, एक शब्द लिवलाए। नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिर है, जो हर हृदय सदा वसाए। बिन सतगुर नाम ना पाई है, बुझो कर विचार। नानक पूरा भाग सतगुर मिले, सुख पाए जुग चार महला तीजा। क्या गबरू क्या बिरद है, मन मुख तृष्णा भुख ना जाए। गुरमुख शब्द रतिया, शीतल होए आप गवाए। अंदर तृप्त संतोखिया, फिर भुख ना लगे आए। नानक जे गुरमुख करे सो प्रवान है, जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी। हाँ बलिहारी तिन कौ, जो गुरमुख सिखा। जो हर नाम ते आए दे तिन दर्शन पिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा, हर जस मन लिखा। हर नाम सलाही रंग स्यों, सब किले विख क्रिखा। तन तन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुर धरे विखा। श्लोक महला तीजा। गुरबिन ज्ञान ना होवई, ना सुख वसै मन आए। नानक नामे हुणे मन मुखी, जासन जन्म गवाए। महला तीजा। सिद्ध साधक नामै नु सब खोज दे, थक रहे लिवलाए। बिन सतगुर कने ना पायो, गुरमुख मिलाए मिलाए। बिन नामै पहनण खान सब बाद है, तिग सिद्धि।